एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 मई 2026। सवेरे के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया

0: की ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। आइए सुने भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 178। 6:45 से आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज आप इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुन सकेंगे और यही कार्यक्रम आप संध्या 6:45 पर भी सुन सकेंगे। 7 से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से हम लाएंगे हम है राही प्यार के। 8 का समय रहेगा समाचारों के लिए। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण समय है 8:15 से और 8:30 से आपके लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम चित्रलोक। पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार। आप सुन सकेंगे 9:30 से। 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे निर्देशक रमेश

तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। रंग तरंग कार्यक्रम का आनंद लीजिए 11 बजे से और 12 बजे आप सुनेंगे समाचार। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। विविध भारती पर सुरीला सफर प्रसारित होगा दिन में 1 बजे से और 2 बजे से कार्यक्रम त्रिवेणी। दोपहर 2:15 का समय रहेगा समाचारों के लिए। 2:30 से लुत्फ उठाइए गुजरे जमाने के सदाबहार नगमों का और 3 बजे का समय रहेगा आपका चहेते कार्यक्रम सखी सहेली का। 4 बजे और आज के पिटारा में होगा सेहतनामा। आप सुनेंगे त्वचा रोग और उपचार डॉक्टर जीएस मूर्ति से बातचीत। त्वचा रोग के बारे में वो बताएंगे और उसके उपचार के बारे में बातचीत की जाएगी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत आप सुनेंगे 5 बजे से और 5:30 से तराने नए पुराने। 6 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए और 6:05 से कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग। संध्या रंजन कार्यक्रम होगा 6:35 से। जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 7 बजे से और 7:45 से इंद्रधनुष में आज होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कोरा चेक, जी हाँ साथियों, ये नाटिका है जिसे आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत। लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत डी पटेल, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम प्रसारित होगा चित्रलोक और 8:45 से समाचार। आपके लिए कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 9 बजे से और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुनिए जो केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर। रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। तो अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के झरोखा के अंतर्गत जानकारी। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस का भाग 178।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 178। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला को लेकर आज हम फिर उपस्थित हैं। इसकी दूसरी कड़ी आज प्रस्तुत है। कल्पना जी और अनुजा जी एक बार फिर से विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, यति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस कड़ी को शुरू करने से पहले कल्पना जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन सा समय था, वो कौन सी बाध्यता हुई कि महिला रचनाकारों

0: की बंदिशें बनाई जाने लगी, क्यों आवश्यकता पड़ी?
1: बहुत पहले जब गुरु शिष्य परंपरा में तालीम दी जाती थी
0: जी,
1: उस समय घरानों का बहुत बंधन था और गुरु ने सिखाई हुई और उनके घराने की बंदिशों को ही गाया जाए, ये एक नियम था और उसके लिए प्रतिबद्ध थे गायक भी और गुरु भी शिष्य भी।
0: जी जी,
1: तो उस समय उतनी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई क्योंकि वो विचार ही ऐसा था कि जो गुरु ने सिखाया वो शिष्य गाएं।
0: जी।
1: लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया, सोच में परिवर्तन हो गया, गायकी में भी कुछ बदलाव आना शुरू हुए, हर कलाकार की जो अपनी एक विशिष्ट सोच है, गायकी है, जो उनके मनन चिंतन द्वारा जो वो अर्जित करते हैं उसे एक अलग स्वरूप देने की भी कोशिश होती है, कुछ अलग अलग घरानों या कलाकारों का भी उनकी गायकी पर असर होता है, जो उनको अपने हिसाब से उस गायकी को पेश करने की आवश्यकता या इच्छा महसूस हुई होगी और तभी इस रचनाकार या बंदिशकार के स्वरूप में जो बदलाव आया। और पुरुष स्वर तो हम सुनते ही हमेशा कि वो लोग तो हमेशा ही बंदिशें बनाते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भी अपने मन की इच्छा या अपनी गायकी या मधुरता उसके हिसाब से उनको भी कुछ बंदिशों में ऐसा लगा होगा, कुछ साहित्य भी ऐसा होता था पहले कि जो पुरुष प्रधान गायकी भी थी और शब्दों में भी पुरुषों की जो भावना
0: था उनका ही।
1: जी, तो उस हिसाब से महिलाओं को भी ये अंदर से महसूस हुआ कि हमें भी कुछ रचनाएं बनाना चाहिए
0: और उनको भी आजादी मिली इस बात
1: की। आजादी भी और अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, उस राग की आवश्यकता के हिसाब से वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके।
0: जी, तो आज की इस कड़ी में क्या डॉक्टर प्रभा अत्रे की चर्चा करना चाहेंगी?
1: जी जरूर। डॉक्टर प्रभा अत्रे एक बहुत ही परिचित नाम है संगीत के क्षेत्र में।
0: जी,
1: आपने गुरु शिष्य परंपरा में किराना घराने की तालीम पंडित सुरेश बाबू माने और श्रीमती हीराबाई बड़ोदेकर जी से प्राप्त की। उस्ताद आमिर खान साहब की गायकी का प्रभाव आपकी गायकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, खास करके सरगम का बहुत अच्छा प्रयोगशील उपयोग करके अपनी गायकी को उन्होंने समृद्ध किया है। आपकी गायकी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के गायन का भी प्रभाव उनकी ठुमरी गायन में हमें दिखाई देता है।
0: जी, तो आज क्या प्रस्तुत करेंगी, कौन सी बंदिश?
1: आज एक प्रभा जी का बनाया हुआ एक तराना पेश करेंगे।
0: अरे वाह,
1: जो कि राग मधुवंती में निबद्ध है।
0: जी,
1: तो अब सुनते हैं राग मधुवंती का चलन और उसके बाद प्रभा जी ने बनाया हुआ एक तराना। राग मधुवंती एक बहुत ही सुमधुर राग है, इसकी जाति ऑर्डर संपूर्ण गायन समय दोपहर का करीब 12 से 5 बजे तक के बीच में गा सकते हैं। इस राग में गंधार कोमल एवं मध्यम तीव्र लगता है, इसके आरोह में ऋषभ एवं धैवत वर्ज होता है।
0: जी।

0: बहुत सुंदर तराना आपने प्रस्तुत किया और अब बताइए क्या सुनवाएंगे, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
1: वैसे तो प्रभा जी ने कई बंदिशों का निर्माण किया है, लेकिन आज हम उनका बहुप्रचलित राग मारुबिहाग, उसमें हम आपको एक विलंबित ख्याल सुनवाएंगे और एक द्रुत बंदिश।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की ये थी आज दूसरी कड़ी। कल तीसरी कड़ी के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थीं ममता सिंह, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी आप संगीत सरिता कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज का विषय पे, आज जो विषय है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो है आने वाले समय में आपकी और हमारी जिंदगी कैसी होगी और हमारा देश किस राह पर प्रगति करेगा, हमारे देश की आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं क्या हैं, यह सब निर्भर करता है आने वाली जनगणना पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने राजस्थान प्रदेश में स्वगणना प्रक्रिया 1 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आज के नमस्कार अलवर के इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे

स्वगणना प्रक्रिया के बारे में और यह क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे होने वाले हैं, ये सभी जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। श्रोताओं, स्वगणना प्रक्रिया आज के समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी पहल के रूप में सामने आई है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक से संबंधित सही, स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी एकत्रित करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नागरिक स्वयं अपने परिवार और निवास से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दर्ज करते हैं, जिससे आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। जब व्यक्ति अपनी जानकारी स्वयं भरता है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम होती है और वास्तविक स्थिति का सही आकलन संभव हो पाता है, जो किसी भी देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक आधार होता है। इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय तथा आवास की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं, जो आगे चलकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में उपयोग की जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी जानकारी पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ दर्ज करे, ताकि भविष्य की योजनाएं सही दिशा में बन सके और उनका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके। श्रोताओं, स्वगणना का कि यह विशेषता है कि यह नागरिकों को अपनी जानकारी पर स्वयं नियंत्रण रखने का अवसर प्रदान करती है और तकनीकी माध्यमों के कारण यह प्रक्रिया सरल और सुलभ बनाई गई है, जैसे कि लोग घर बैठे ही अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक कार्य अधिक व्यवस्थित और तेजी से पूरे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस बार की जनगणना जो होने वाली है वह पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें कम से कम पेपर का इस्तेमाल होने वाला है, जो पूर्व की जनगणना से अपने आप में एक अलग जनगणना होगी। नाम मात्र का पेपर वर्क होगा, अधिकतर कार्य डिजिटल होगा, जिससे कागज की बहुत बचत होगी और हमारे पर्यावरण के यह अनुकूल भी होगा। श्रोताओं, आपके साथ बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, लेकिन पहले करवा देते हैं आपका मनोरंजन।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे स्वयं गणना के बारे में। तो स्वयं गणना प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें इसके पोर्टल में लॉगिन करना होगा। इसके पोर्टल पर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर पर census.gov.in पर अपने राज्य का चयन कर कैप्चर कोड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम और अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो भी आपके पास है उसको दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर और मुखिया का नाम बाद में सही नहीं होगा, यानी कि बदला नहीं जाएगा, इसलिए आपको वन टाइम में ही इसे सही डालना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद अपनी पसंदीदा भाषा और ओटीपी सबमिट करें। सबमिट होने के बाद आप अपने जिले का और पिन कोड का, गांव का, नगर का या जिस स्थान पर भी आप रहते हैं उसका चयन करें। फिर वहां पर आपको एक मैप दिखाई देगा जिसको ट्रैक कर आप अपने घर की सही स्थिति यानी कि सही लोकेशन पर जाकर उसकी पुष्टि कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्नावली में आपसे 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रत्येक प्रश्नों का आपको सही सही जवाब देकर उसे भरना होगा।

इन प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा कि आप पक्के अथवा कच्ची मिट्टी के किस तरह के मकान में रहते हैं, आपके घर में शौचालय है या नहीं, आप मकान के मालिक हैं या किराएदार, आपके घर में पेयजल किस तरह से आता है, नल से आता है या आप बाहर कुआं, हैंडपंप, बोरिंग इत्यादि से पानी पीने का के लिए लेके आते हैं या अन्य पानी का कोई इंतजाम करते हैं, गंदे पानी की निकास की आपके यहाँ से किस तरह से गंदे पानी का निकास है, आपके आसपास घर में रसोई घर में LPG कनेक्शन है अथवा PNG कनेक्शन है या चूल्हे पर आप खाना बनाते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 26 यदि आज आप हमें सुन रहे हैं तो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है कि आपके पास रेडियो अथवा ट्रांजिस्टर है या नहीं। जाहिर तौर पर यदि आप आज हमारा रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आपके पास रेडियो है, तो आपके प्रश्न संख्या 26 में कोड्स आपको भरना है। यदि आप मोबाइल स्मार्टफोन पर रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो नहीं भी सुन रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में रेडियो फंक्शन उपलब्ध है, तो आपको कोड संख्या 2 भरना है। यदि आपके पास परंपरागत रेडियो सेट या मोबाइल स्मार्टफोन के अतिरिक्त अन्य किसी उपकरण पर उपलब्ध है तो उसके लिए आपको कोड संख्या 3 भरना है। इसी प्रकार से यदि आपके पास टेलीविजन है, DTH उपलब्ध है, तो प्रश्न संख्या 27 इंटरनेट सुविधा लैपटॉप के लिए, प्रश्न संख्या 28 और 29 टेलीफोन मोबाइल के लिए, प्रश्न संख्या 30 साइकिल स्कूटर मोपेड के लिए, प्रश्न संख्या 31 कार जीप वैन के लिए, प्रश्न संख्या 32 और आप किस तरह का अनाज इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए प्रश्न संख्या 33 का आपको सही जवाब देना है, क्योंकि कुछ बेसिक प्रश्न हैं जो आपकी और हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए प्रश्न हैं, ताकि भविष्य में इनके आधार पर देश की योजनाएं बन सकें। इसलिए हमारा सबका यह कर्तव्य है कि हम इन प्रश्नों का सही सही जवाब दें। आपकी यह जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी पोर्टल पर या अन्य किसी भी माध्यम से शेयर नहीं की जाएगी। इसी के साथ सुनवा देते हैं आपको अगला गीत।

श्रोताओं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद एक बार पुनः पुष्टि करें, अपने उत्तर की जांच करें और सबमिट करें। इसके बाद आपको एक 11 अंकों का विशेष पहचान कोड SEID दी जाएगी, जो प्रगण

0: आपके घर आएंगे उन्हें आप यह आईडी दें जिससे आपसे ज़्यादा पूछताछ या ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। स्वगणना के पश्चात क्षेत्र सत्यापन की प्रक्रिया की जाती है जो इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके अंतर्गत संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विवरण सही, पूर्ण और विश्वसनीय हैं। यह प्रक्रिया आंकड़ों की गुणवत्ता और अधिक मजबूत बनाती है और प्रशासन को सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। क्षेत्र सत्यापन के दौरान नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई अधिकारी जानकारी की पुष्टि के लिए संपर्क करे या आपके पास आए तो उन्हें सही जानकारी देना और आवश्यक सहयोग प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण होगी और किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना कम से कम रहेगी। यह पूरी व्यवस्था केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि देश के विकास की एक मजबूत नींव है। सही और सटीक आंकड़ों के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों में प्रभावी योजनाएं बनाती है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करती है। इसलिए स्वगणना प्रक्रिया और क्षेत्र सत्यापन दोनों में सक्रिय भागीदारी देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि आपकी सही जानकारी ही एक सशक्त, संगठित और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वगणना के बारे में और चलते चलते अभी आपको सुनवा देते हैं ये गीत।
1: दीवानी सी

और इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार अलवर हमारा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज में फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के इस गीत के साथ। गीतकार हैं भैरव अरुण और संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में फिल्म गुनहा से। गीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में आपको सुनवाते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है आर डी बर्मन का।

आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है आर डी बर्मन का।

किशोर कुमार और सपना की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म जांबाज से के गीत। गीतकार हैं इंदिवर और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद आप सबकी निगाह आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?

0: मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। तीन स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो तीन, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में तीन मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साफ दांव पर है?
0: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलापुर सीट जो कि चेन्नई नहीं है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता दो सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो दो जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है जो कि महिलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी।
1: संवाददाताओं से

0: ताज़ा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: पांच राज्यों की सात विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये सात सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि

0: बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट न सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च, चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम, पश्चिम केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू, 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज आप जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें सुनेंगे।

और इसी के साथ सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
1: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए

0: हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
1: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्म लोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम होर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कण्व गुरुकुल माने जाते हैं, इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ महीनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें उरांव भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनि और वैद्यराज चरक, और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और हमारे ईमेल यानी audio@ciit.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सींग विदाउट सींग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

0: दोस्तों नमस्ते। दोस्तों किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, ना काम ना धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ, सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया। एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है।

0: अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है, मैं भीग रहा हूँ उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है फिर भी समझ न आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सीखी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी, तू चिड़िया मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर डलिया पड़ी है उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था, कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पास लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
2: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
0: दोस्तों वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी, बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा, पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
2: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।

Oh, my God.

0: छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आंख मिलाती है, मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
1: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी, कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
0: क्या मतलब?
2: बनाते, जैसे वो बंदर था।

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और इसी के साथ कार्यक्रम के का संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, मतगणना जारी। प्रदेश में बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। राज्य के 24 जिलों में आज अंधड़ और बारिश का अलर्ट। कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार। और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पांडुलिपि संरक्षण पर आज से 4 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की गई, इसके बाद ईवीएम से गणना की जा रही है। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना

0: लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए हो रही है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष सफर में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 24 घंटे पृथ्वी अवलोकन क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में गलता तीर्थ का समुचित विकास करने के संबंध में कल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए धाम परिसर में बेहतर सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए, साथ ही गलता मार्गों पर धार्मिक चित्रण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों के लिए समुचित वाहन पार्किंग विकसित करने और मंदिरों की संपूर्ण जानकारी प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलता तीर्थ का पौराणिकता और आधुनिकता के संगम के साथ विकास किया जाए। उन्होंने गलता के पवित्र कुंडों की साफ सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग करने और परिसर में वानरों के लिए विशेष स्थान निर्धारित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस पौधरोपण अभियान में ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी पर जोर दिया है। कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में उन्होंने आम लोगों को पौधरोपण के लिए जागरूक करने और इस अभियान में स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा के झातलिया, उदयपुर के बांकी और सिरोही के जनापुर में चंदन वन विकसित करेगी। हर चंदन वन में 10,000 से ज्यादा चंदन के पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की वन धन संपदा समृद्ध होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चंदन वन पौधरोपण के लिए सभी तैयारियां मॉनसून से पहले पूरी की जाए। श्री शर्मा ने वन विभाग को किसानों को फलदार पौधों के वितरण की योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पहाड़ी और वन क्षेत्रों में ड्रोन सीडिंग और अरावली क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करने की भी बात कही। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाली जिले के जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के आश्रय स्थलों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नए निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेंदुओं की आवाजाही और उनके आवास को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और पर्यटन गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: होटल, रिसोर्ट, होम स्टे जैसे पर्यटन इकाई को नए लाइसेंस जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हाई कोर्ट ने तेंदुओं के प्राकृतिक आवास, गुफाओं और उनके मूवमेंट कॉरिडोर को पूरी तरह सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पूरे क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट ने कांटेदार तार, बाइल वायर लगाने पर भी रोक लगा दी है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में आज भी कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अंधड़ और बरसात की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजधानी जयपुर में भी तेज आंधी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इस बीच प्रदेश में पिछले 2 दिनों से आए अंधड़ और बरसात के कारण तापमान में गिरावट आई है। सवाईमाधोपुर, बालोतरा, बारा और करौली सहित कई जगह देर शाम धूल भरी आंधी का दौर चला। इसके बाद गरज के साथ हल्की बरसात हुई। भरतपुर में करीब 1 घंटा मूसलाधार बरसात हुई और कई जगह ओले भी गिरे। इसके अलावा कोटपुतली बहरोड, हनुमानगढ़, झुंझुनू और बाड़मेर में भी ओलावृष्टि हुई।

0: उधर पाली, फलौदी, जोधपुर और जैसलमेर में तेज गर्मी का असर जारी है। जैसलमेर में बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए समय में बदलाव किया गया है। इनका समय सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक किया गया है। जैसलमेर में गर्मी के मौसम में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसीलिए गर्मियों के दिनों में पहली बार हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि जैसलमेर को वर्ष पर्यंत पर्यटन वाले गंतव्य के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए रात्रि पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: समर में हम क्या टूरिस्ट को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी इवनिंग्स हैं समर्स में बहुत प्लेजेंट होती हैं। यहाँ पर हम मॉर्निंग्स में कुछ ड्यून वॉक्स का हम प्लानिंग कर सकते हैं, इवनिंग्स में हम दूसरी गतिविधियाँ कर सकते हैं। यहाँ के इतने स्काई जो रात में है बहुत क्लियर स्काई होता है, तो स्टार गेजिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि डेजर्ट समर एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को लेकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रशासन इसमें अब आगे बढ़ेगा, जिससे कि हम एक हाई वैल्यू लो वॉल्यूम एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे फोकस कर सकें।
0: जयपुर में आज से पांडुलिपियों के संरक्षण और परीक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 7 मई तक चलने वाली ये कार्यशाला राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में रखी गई है। इसमें दुर्लभ और अप्रकाशित आयुर्वेद पांडुलिपियों के संकलन और डिजिटलीकरण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में देश भर के विभिन्न संस्थानों से संकाय सदस्य, शोधकर्ता और विद्यार्थियों की सहभागिता होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की ज्ञान भारतम से विशेषज्ञ प्रशिक्षक पांडुलिपियों के संरक्षण पर विशेष सत्र संचालित करेंगे। देश भर में आज से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में आग संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, मतगणना जारी। प्रदेश में बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। राज्य के 24 जिलों में आज अंधड़ और बारिश का अलर्ट, कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार। और जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पांडुलिपि संरक्षण पर आज से 4 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM डिस्कुट 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

एक अलग ही खनक है सुनिधि चौहान की आवाज में, और इन्हीं का गाया ये गाना था चमेली फिल्म से। इरशाद कामिल ने लिखा था इसे और संदेश शांडिल ने म्यूजिक तैयार किया था। एक और स्वीट सा ड्वेट आपको सुनवाते हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

मीठा संगीत शांतनु मोइत्रा का स्वानंद किरकिरे के बोल थे शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे थे पीके फिल्म का गाना। एक छोटा सा अंतराल

0: शांति ओम फिल्म का ये गाना था। राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का म्यूजिक।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।

0: श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब समय आ गया है कि चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश पेश की जाए। तो चलते चलते राजेश रोशन का संगीत, इंदिवर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक के साथ साथियों की आवाजें।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए करण अर्जुन फिल्म के इस गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम तो यहीं पूरा होता है। और साथियों, जिंदगी के हर पल को मुस्कुरा के जीने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी के बारे में। यही है हमारी आज की

इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
1: अटकन मटकन दही चटकन धम्मड़ दुस्ता थूकते गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल।

0: गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के।
1: इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड।

पहुंचते पहुंचते आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहाँ उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था। और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी गीत का।

गीत गाता चलका ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म थी तपस्या।

ये गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं, आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था।

पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्कार।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्ण चंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इसमें बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
1: जी।
0: तो कादर खान हमारे प्ले में, मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
1: अच्छा।
0: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट में, गेट आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, यार मुझे दो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले दो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चलो रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना।
1: हाईजेक हो गया प्ले।
0: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
1: हाँ।
0: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
1: जी,
0: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
1: इस बार वो
0: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ आई स्टेज पे।
1: हाँ।
0: के एम मुंशी की वाइफ
1: जी,
0: भारतीय वर्धन की मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
1: हाँ हाँ।
0: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था, या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
1: बाद में फिर शुरू हुआ,
0: फिर वो उधर, फिर बहुत बाद में किया, अभी किया
1: जी।
0: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
1: जी,
0: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
1: तब तक आप आखिर क्या थी?
0: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था, समझिए 23 साल।
1: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल,
0: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात होगी। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
1: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले खत्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ उनके ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूंगा फिर करूंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफी
1: आगे
0: चला। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर।
1: हाँ हाँ।
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है, इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती है, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वहाँ कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है। एक सेट था बंगले का, जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, एक

0: आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, विश्वनाथ की सारी,
1: मतलब
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था पांच आने में, वहां पे आ गए, कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे। जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था, लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो पांच आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

क्रिटिक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे, बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती शूटिंग रहो सब। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया, कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमच भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं,

0: कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीजें देखी, वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम मिल तो कहीं और काम करने लग गया। कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ दो चार दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे। तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ,
0: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा आप देखने आइए, तो कह रहे बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ, बोला आज देख लीजिए फिर पांचवें फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल रात को मेरे स्टूडियो आ जाओ, फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरेन का एक आदमी आया वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे, नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे मैं आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तीन पिक्चर बनाऊंगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके,
0: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए पांचवा रख लीजिए मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है मैं जा रहा हूँ।

0: तो जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर मैंने बताया आपको सचिवालय में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार फारूक शेख वगैरह, तो सचिवालय में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आजाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सचिवालय में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैंने यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना है आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी।
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पालील पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की, वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी जाओ, तेरे को छोड़ के आ जाएगा, वो मुझे वहाँ छोड़ देता सर, मैं आ जाता। तो इन चीज़ों में जो लिंक वाले बातें याद आती है याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना, तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी,
0: तो ट्रक वाला चोनी लेता था या 8 आने लेते थे। और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ध्यान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे, इनके डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए, और हम लोग सब जो है बैठे वो, तो हम दादर सब लोग उतरते थे वहां से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहां भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहां से किंग सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर 1 थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, क्लर्की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे, उधर BA जब इन्होंने इनके संग की थी वहाँ नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है बचपन से साथ में थे उनके।
1: हाँ।

0: तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोटेक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया। वो बाकी चीजें कर कास्टूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे और ये सारा काम आज था समझिए टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यू भी लिखता था, डायलॉग भी देता था।
1: हाँ
0: तो वो सारी चीजों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती
0: ट्रेनिंग हो गई।

अब चाहे लग जाए गैया मैंने तेरी बाह पकड़ ली मन तुझे नियत

0: अब सब करते करते पहले ही मिल, और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था, और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा, अपने आप खाओ, ठीक है, ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले, और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया उसने कहा काका नाराज हो रहा है, रमेश तू क्या कर रहा है? मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं वो तेरे लिए खाना मंगाया, उसने डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीजों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊँ, और एक दिन मैं लेट होगा तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सॉरी आंदाजी हो। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
1: हीरो हो गई।
0: हाँ, और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी, बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ, कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोलो रमेश लिख दो वहां पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो, अचानक में नजर मुझे पड़ेगी बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे तो वो मैंने लिख दिए वहां पे, उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूं क्यों गया। तो ऐसा भी किस्सा, तो अलबत्ता खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की, अब मुझे यकीन कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो मैं।
1: लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपर हिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया, तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है, वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन में एक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते हैं ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी,
0: तो वैसे ही पॉइंट में बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं पांच आने में पिक्चर में बहुत देखिए, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है, ये आप हूट कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो इंटरकॉलेजेट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्ता एनीवेज वहां देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी, देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं,
1: अरे बाप रे,
0: तो जैसी ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था,
1: हाँ।
0: पहले मुझसे बोला हुआ था, पूछो, मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो, तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ, अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने,
1: हाँ हाँ।
0: तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाए,
1: हाँ।
0: तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया,
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ,
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है,
0: पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी,
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों रहा, लिखा बच्चे के हाथ में,
1: हाँ,
0: मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं, तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है,
1: हाँ।
0: फिर आगे कुछ गया, हाँ। एक और हाईलाइट आई,
1: हाँ।
0: मैं यहाँ बैठा हूँ फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: हाँ। तुम मुझे,
0: हाँ, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ
1: बैठा हूँ,
0: हाँ, समथिंग लाइक दैट, मैंने 25 हफ्ते, फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया,

0: प्लीज निरीक्षण में ये सब मत बोलो, चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का इंग्लिश शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे। अब तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी होगी थी वो
1: जंजीर,
0: तो अब तो मैं हिट हीरो हिट होगा। तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर ले समथिंग, कुछ छोटा मोटा। सलीम जावेद भी साथ में थे, हमने कहा लेकिन ये शूट ज्यादा करता है अमिताभ बच्चन, अगर आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए और इनकी डेटे भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे
1: वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वो ही था, उनको छोटे भाई का रोल करना था। अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है। अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना, तो उससे बेटर रोल है कभी कभी मैं आपका, दोनों पिक्चर जैसे चोपड़ा कर रहा है, खुद के लिए एक
1: गुलशन आएगी,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए।
0: हाँ कोई बोलते सर बीज डाल रहे कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है, जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
1: मैसे
0: बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया। कि भाई देखिए लेंथ वाइज हो है, पर सोच लो मैं इनका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे। जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए, ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है। इन लोगों ने भी सलीम जावेद में कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला
1: बिल्कुल,
0: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट होगी साहब।
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट है?
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
1: आप चीफ असिस्टेंट
0: अब हो गया सब जगह। तो वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
0: गाने शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम ढिल्लो, दो ही गाने थे। कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
1: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया, तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए, क्या होता था जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
1: मंगेश देसाई री रिकॉर्डिस्ट, बहुत बड़े
0: मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था, अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और यश जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात तो करते होते फौरन, कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो यश जी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: आपने नरेशन के समय
0: वही क्या? तो कहने लगे नहीं बेटा वो थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स होता है देवन वर्मा, गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पे गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: उनका था देवल वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट लिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो उसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम दीजिए, हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, जैसी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज्यादा वो सब बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात करवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे।
0: तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते, 25 हफ्ते, 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज। तो कहने लगे ठीक है, हम आपकी अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना?
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नहीं कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा का, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था, तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, वो अनाउंस हुई है स्क्रीन में, उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा।

0: बाकी दो दाने काटे देवन वर्मा का, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार, प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, और अनाउंस हुई है स्क्रीन में उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था, बाद में कुछ आपस में जो भी होगा नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी।
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके
0: मैं
1: थे,
0: बन चुका था
1: तब तक तो बसेरा
0: बसेरा आगे थी, हाँ। बसेरा आगे थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है आप सुन लीजिए,
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था,
1: हाँ बिल्कुल
0: ऋषि कपूर इसमें होगा, और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी,
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं, तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था, ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, मैंने कहा यार वही स्मगलिंग वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए,
1: हाँ हाँ
0: भाई जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते स्क्रीन प्ले तैयार सब,
1: जी जी
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं इसमें, डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए,
1: जी जी जी,
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे, कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपको भी वही दे देंगे, तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के, बोले 21 लाख, तो मैंने कहा 21 लाख 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 लाख जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी।
1: क्या गजब बात है, फिर
0: तो साहब आप सोचिए, बोले नहीं हमको 21 अभी मिले नहीं है, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं, अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा, ये उसमें पार्टनर भी थे उसको,
1: अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था,
1: हाँ
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए या आप खुद प्रोड्यूस भाई, तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी, लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर, तो मैंने कहा भाई मैं मुझे साथ ही दे दीजिएगा मैं जाता हूँ, तो बोले आपने कहीं जाना था क्या, कहा आपने, मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पे जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया, तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे
1: जी,
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे, जावेद साहब को पता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से,
0: हाँ थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है,
1: हाँ
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी,
1: करेक्ट है,
0: और मैंने बाकी पिक्चरें जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो, अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी,
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा, तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे,
1: ओए ओए
0: मुझे समझ नहीं आया, अब मैं थोड़ा सा उदास था वो मान गए, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है,
1: हाँ
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है

0: जी
1: ये पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
0: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
0: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। उजाले

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: शकील बदायूनी की लिखी यह कवाली थी, रवि का संगीत था, आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में चौदहवीं का चांद फिल्म की यह कवाली आपने सुनी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।

0: श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

झूठी फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल थे, बप्पी लाहिरी का संगीत था। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

राजस्थानी लोकधुन पर आधारित एस एन त्रिपाठी का सर्वाधिक यह गीत आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। वीर दुर्गादास फिल्म का यह गीत था, भरत व्यास की रचना थी। विविध भारती का यह कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और कादिर मुस्तफ़ा की आवाज़ें थीं। जुनैद वासी का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे झोले एलएलबी 2 फिल्म से, विशाल खुराना की तर्ज थी। विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म का दो गाना था अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे आनंद, मिलन का संगीत था।
1: आएगी जरूर
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

नशा ही नशा है इस एल्बम का गीत है सुखविंदर सिंह की आवाज में, तर्ज और आवाज और साथ ही संगीत भी सुखविंदर सिंह के, और यही है श्रोताओ आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहले

0: बार सरकार बनाने जा रही है।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोलडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का यह सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दुश्मन फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। इस गीत से पहले श्रोताओ हमने आपको सुनवाया था जाने दुश्मन फिल्म का गीत और उसकी भी तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आनंद कुमार सिंह की आवाज फौक जामी का लिखा ये गीत था, राज कमल की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अपने विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म फकीरा किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, गीत और संगीत रविंद्र जैन के।

प्यार ही प्यार, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म जूली, किशोर कुमार की आवाज, राजेश रोशन की तर्ज, आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा है।

या फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

माले की गोद में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, उषा तिमोथी और साजियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। विविध भारती से आपने सुना कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा 190 सीटों पर आगे है। ये टीएमसी के मुकाबले लगभग दोगुनी सीटों पर आगे बढ़ रही है। असम में भी भाजपा 98 सीटों पर आगे चल रही है। वहां तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में टीवीके पार्टी 105 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। उधर केरलम में कांग्रेस समर्थित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है। वहीं पुडुचेरी में क्षेत्रीय दल AINRC अपने प्रतिद्वंदी दलों से आगे नजर आ रहा है। भाजपा प्रवक्ता तोहिन सिन्हा ने कहा है कि असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में है और पार्टी दोनों राज्यों में भारी अंतर से जीत हासिल करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम भाजपा मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वह ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारत और UAE की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें चला रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के आखिर तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। आकाशवाणी समाचार की व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए रोजाना समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी कल सीकर जिले के खंडेला पहुंची। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए समर्थपुरा गांव के जवान विजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान देश के अमर शहीदों को नमन कर उनके बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से शहीदों से प्रेरणा लेकर हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक आंधी, बारिश और धूल भरी हवाओं का दौर जारी रहने के आसार जताए हैं। आज राजधानी जयपुर सहित 19 जिलों के लिए बरसात का ऑरेंज अलर्ट और 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच राज्य में पिछले 3 दिनों से जारी आंधी बरसात की गतिविधियों से कई स्थानों पर तापमान में कमी आई है। इससे गर्मी से मामूली राहत ही मिली है और उमस का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और हनुमानगढ़ सहित कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। सबसे अधिक करीब 5 सेंटीमीटर बरसात सीकर के श्रीमाधोपुर में हुई। वहीं अनेक स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने तथा यातायात प्रभावित होने

की घटनाएं सामने आई है। उधर कोटा, जोधपुर और जैसलमेर में तेज गर्मी का असर बरकरार है। वहां अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच मापा गया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मोहम्मद रफी की आवाज में आन मिलो सजना फिल्म का ये नजराना था आपके लिए श्रोताओं, और गीतों का नजराना तो हम लेकर आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में। और हमने आपसे पूछा है कि क्या यादें हैं रेडियो की रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड प्लेयर्स हुआ करते थे उनकी, तो अगर आपके जहन में कोई याद है तो आप हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। और वैसे ये सुरीला सफर तो तभी सुरीला सफर बनता है जब हम और आप मिलते हैं साथ साथ, और होती है एक प्यारी सी मीठी सी इबारत, और होते हैं बहुत सारे नगमे। तो कुछ शब्दों को चुनकर हमारे श्रोताओं ने इसमें चिन्हित किया है और बताया भी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत इस तरह के संकेतों से ही सुरीला सफर का मजा बनता है। जिंदगी, प्यार, मिलन, यादगार, याद, दिल, सुकून, वादियां, पहाड़, मौसम, कोयल, आम की डाली, बसंत, बहार, पाजेब, नजराना, फूल, मुस्कुराना, तो ये सारे शब्द इन्होंने बनाए हैं। एक हमारे श्रोता ने करवटें शब्द जो है उसे कुछ इस तरह से लिखा है कि करवटें बदलते रहे सारी रात हम, इस गीत को इन्होंने गेस किया है। और पल भर में कोई हमें प्यार कर ले, इन हसीन वादियों, पतझड़, सावन, पल पल दिल के पास, तो देखते हैं कि कौन से गीत जो हैं आज आपके गीतों से और हमारे शब्दों से मेल खाते हैं। एक हमारी और श्रोता ने लिखा है कि छम छम बाजी रे पायल या पायल की झनकार, उस रेशमी इस रेशमी पाजीब की झनकार, तो ये गीत इन्होंने जो हैं अपनी तरफ से निकाले हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों की वादियों में अपने प्रीतम के साथ का अनुभव प्रकृति और प्रेम का एक यादगार पल होता है। हरी भरी वादियों में, देवदार के जंगलों में और खिले हुए फूलों में विचरण करना, किसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देखना जैसा लगता है। ये समय प्रकृति की गोद में एक दूसरे को समझने और नई यादें बनाने का होता है। और फिर इन्होंने हवाओं, बादलों के बारे में भी लिखा है। जी हाँ, मिलना तो बहुत जरूरी है श्रोताओ। वैसे हम भी जब कहीं जाते हैं तो किसी न किसी से हमारी मुलाकात जरूर होती है। क्या कोई ऐसा वाकया आपको याद है कि जब आपसे कोई मिला हो और उसे आज तक आप ना भूल पाए हों?

अगर आप बताना चाहें श्रोताओं तो आप जरूर बताएं कि इस गीत में कौन सी अभिनेत्री नजर आती हैं और एक बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की जो घास है वो कौन सी घास है। ही रांझा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कैफी आजमी का लिखा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आम की डाली याद रखने की चीज है। श्रोताओं जी हाँ बिल्कुल, जब हम बात करते हैं सुरीले सफर पर जाने की तो बस वादियां हों या फिर जो गांव की वादियां हैं वो हों या फिर पहाड़ों की वादियां हों, इसमें बहुत ही जो एक अलग सा एहसास है वो होता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसी जगहों पे जब आप सेल्फी लेते हैं तो उन्हें किस तरह से संजोह कर आपने रखा हुआ है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और वैसे हर मौसम अपने आप में कोई ना कोई नजराना हमारे लिए ज़रूर लेकर आता है और तभी तो इसे कहते हैं कि ये प्यार का मौसम है। मौसम चाहे कोई भी हो श्रोताओ, लेकिन चेहरे पर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं कि खिला जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर आज पहाड़ियों के पर्यटन क्षेत्र से हो सकता है कुछ बातें मिले इसमें। तो कुछ साल पहले हम नैनीताल गए थे, वहाँ की हसीन वादियाँ, नौका विहार आज भी हमें याद है। ऐसे ही कुछ पर्यटन के स्थान जहाँ आज का ये सुरीला सफर पूरा करने का ऐसे ही वक्त कभी कभी जो है वो मिलता है और कभी कभी जिंदगी के साथ निभाने वाले दोस्त भी मिल जाते हैं। मौसम मधुवंती बसंत बहार के गीत सुनता हूँ, कुहू कुहू बोले कोयलिया ये गीत इन्होंने याद किया है। वैसे जो हमने अभी आपको गीत सुनवाया ही रांझा फिल्म का, ये गीत भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। आगे ये लिखते हैं कि ऋतु बसंत की प्रथम कली खुलती है, प्रेम अपनी प्रतिमा के लिए जो है

गजरे लाता है, गजरे लाता है, एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो मैं लगा दूं। गांव में दिन भर गर्मी रहती है लेकिन रात को फूल और पत्ते, पेड़, ठंडी हवाएं, तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और हमारे श्रोता ने पसंद किया है जो गीत, जो इन्होंने अंदाजा लगाया है, वो है हुस्न पहाड़ों का। शायद ये गीत आज जरूर शामिल होगा। वैसे इस जो लाइन है, यानी जो हमारी इबारत है, इसमें हमने दिल की बात भी की है श्रोताओं, जो वादियों में अक्सर रह जाता है। हम तो चले आते हैं लेकिन हमारा दिल जो है अक्सर उन्हीं वादियों में घूमता रहता है, सोचता रहता है उन्हीं वादियों के बारे में। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ ये वादियाँ और भी सुकून भरी हो जाएं, तो फिर कह नहीं क्या। और ऐसे में अपने होते हैं, अपनों का साथ होता है।

श्रोताओ, अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी एक जगह को चुनिए जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, तो वो जगह कौन सी होगी?

मिलो तो प्यार से फिल्म ही रांझा का गीत इन्होंने जो है वो उस गीत के बारे में अंदाज लगाया है और लिखते हैं कि बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक गीत है ये, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया और प्रिया राजवंश और राजकुमार नजर आते हैं, यानी पूरी जो एक डिटेल है वो इन्होंने लिखी है और कुछ और गीतों को इन्होंने अनुमान लगाया है। आपकी कसम फिल्म का गीत जिसमें किशोर कुमार जी की आवाज़ है और एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नजराना या नजराना भेजा है किसी ने प्यार का इन हसी वादियों से, हुस्न पहाड़ों का इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, और रूठे रब को मनाना आसान कोयल क्यों गाए। जी हाँ, तो कुछ कुछ जो गीत हैं वो तो मिल ही रहे हैं श्रोताओं, और आपने बहुत सही बहुत ठीक अनुमान लगाया है कि ठीक है बहुत सारे गीत का अगर मिलान न हो पाए तो भी शब्दों को आप बिल्कुल सही परख रहे हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी। एक हमारे और श्रोता देश परदेश के गीत को जो है वो सोच रहे हैं और लैला मजनू फिल्म का गीत इस रेशमी पाजेब की झनकार ये इन्होंने सोचा है और लिखा है इस बारे में। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रूठे हो सनम तो फिर क्या है, रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे, न रूठो रूठो और तुमने किसी से प्यार किया, और भी कुछ एक रूठने से इन्होंने गीत बताए हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पर छोटी सी कविता याद आई है इनको कि जिंदगी प्यार का एक नजराना है, हर मिलन में छुपा अफसाना है, वादियों में दिल को जो सुकून मिले वो मौसम भी जैसे दीवाना है, कोयल की तान में मीठी सी बात, बसंत बहार का रंग सुहाना, फूलों में लिखी हर एक मुस्कान, यादों का प्यारा खजाना, चलो इन पलों को सजा लें हम, हर लम्हा अपना तराना है।

जी हाँ, मौसम आजकल कुछ ऐसे ही करवटें ले रहा है। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपने रेडियो के बारे में पूछा है, 1968 में घर में फर्नीचर कैबिनेट की बात इन्होंने करी कि वाला रेडियो दादाजी लाए थे जिसमें बैटरी लगती थी जो एक माह चलती थी। उस पर विविध भारती, सिलोन, आकाशवाणी, इंदौर के कार्यक्रम हम सभी सुना करते थे। और एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत था मिलो न तुम तो हम घबराएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड प्लेयर की मीठी मीठी याद है जब शादी या फंक्शन में घर के दरवाजे पर वो बक्सा नुमा भोपू जाता था, उसमें काले तवे के समान जिस पर बैठा स्वान जो मिस्टर वॉयस कहलाया, पीतल की घड़ी नुमा बक्से में लगी रहती थी, उसे घुमाया जाता था तब ये प्लेयर घूमता था। बाद में तकनीक के विकास में वो रिकॉर्ड प्लेयर खूबसूरत बक्से में रेडियो के साथ आ गया, रेडियोग्राम, और घर की शोभा बढ़ाने लगा। मेरे घर में सबसे पहला रिकॉर्ड आया था मदर इंडिया मुगले आजम, और इस समय नई फिल्म आई थी किस्मत, शम्मी कपूर की फिल्म तुमसा नहीं देखा। फिर कुछ दिन के बाद लॉन्ग प्लेयर आया शोले का और पाकिजा का शोले वाला में डायलॉग सहित रिकॉर्ड आते थे। एक दशक के बाद फिर कैसेट का जमाना आ गया। जी हाँ, रिकॉर्ड्स की जब आपने बात की है श्रोताओं, तो ये अलग अलग स्पीड के हुआ करते थे और इनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो सिर्फ एक ही गीत के होते थे और कुछ में 6-7 गीत भी हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी गीत के बारे में करवटें बदलते रहे, ये गीत इन्होंने जो है वो समझा था कि हो सकता है आज बजे। एक और श्रोता ने लिखा है कि पिछले बार धर्मपत्नी के जन्मदिन पर मैंने चांदी की पाजेब और चांदी की बिछुड़िया का नजराना दिया था, और कभी कभी ये गीत मैं गाता हूँ धर्मपत्नी के लिए, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तोरा बदन चूमे। तो ये गीत भी है, जी हाँ श्रोता, बहुत ही खूबसूरत नगमा है और आपने पसंद भी किया है, बहुत ही सुंदर नगमा। और देखते हैं वैसे आज क्या गीत बजता है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं, हमने ये पूछा था आपसे कि आपको अगर किसी एक जगह को चुनना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो शिमला पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मी के मौसम का भी अलग ही अंदाज होता है, कहीं हम सैर सपाटे के लिए निकले तो तरह तरह के फूल नजर आते हैं। आजकल अमलतास के फूल, गुलमोहर के फूल और साल वृक्ष के छोटे छोटे सफेद पुष्प वातावरण को मनमोहक बना रहे हैं।

और जनजाति वर्ग के लोग इस समय वनों पर एकत्र करने में लगे हुए हैं, जो इनकी आमदनी का अच्छा स्रोत होता है। वैसे आपके लिए एक बार फिर हम ये इबारत पढ़ देते हैं श्रोताओं, जो आज हमने फेसबुक पेज पर दी है। जिंदगी प्यार का नजराना है, किसी से मिलो तो प्यार से मिलो, इन पलों को यादगार बना लें, चलें उन्हीं वादियों में जहां दिल को सुकून मिलता है। वैसे आजकल पहाड़ों की सैर और यहां करवटें लेता मौसम सैलानियों के लिए किसी मीना बाजार की तरह सज चुका है। कहीं मधुवंती और कहीं बसंत बहार की तान लिए आम की डाली पर कोयल गीत सुनाती है, जैसे किसी रूठे हुए को मनाती है और पाजीब का नजराना देती है। तो बात इतनी सी है कि ये मौसम भी फूलों से लिखी प्रेम की किसी इबारत की तरह ही होते हैं, जो हर पल मुस्कुराते हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी एक सफर, जी हाँ बिल्कुल सुहाना है, और प्यार हुआ इकरार हुआ ये बातें होती हैं। दीवाना लेके आया है नजराना, ये गीत इन्होंने सोचा और लिखा भी है। ये फिजाएं बुलाने लगती हैं, ऐसे में पहाड़ों का हुस्न उभर कर आता है। अम्बुआ की डाली पर कोयल बोलने लगती है, पतझड़ के बाद बसंत बहार छा जाती है। रेशमी पाजीब की झनकार सुनते सुनते सारी रात वो करवटें बदलते रहते हैं, और फिर रूठे रूठे पिया को कैसे मनाऊं इस सोच में फूलों की रंग से दिल की कलम से संदेश लिख देते हैं। जी हाँ, जो मौसम पर सीधा असर करता है।

श्रोताओं, वैसे आजकल आपने कोयल की जो मीठी मीठी सी तान है खूब सुनी होगी। इसके साथ ही एक और पक्षी है जो आजकल खूब बोल रहा है और खूब सुनाई दे रहा है। क्या इस पक्षी को आप पहचानते हैं?

0: सा मुखड़ा
1: श्रोताओ, जरा ये तो बताइए कि आप मीना बाजार से क्या समझते हैं, क्योंकि आज ये शब्द भी हमारी इबारत में है, क्योंकि लोग छुट्टियों का मौसम है और ऐसे में जो सर्द वादियां हैं, जो पहाड़ी वादियां हैं, या फिर अपने गांव की सैर पर निकल चुके हैं और बातें करें अगर कुछ खास अंचलों की, तो वहाँ मीना बाजार सजते हैं। मीना बाजार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्या ये मीना बाजार आज भी लगते हैं, इस बारे में हमें बताइए। आप सुन रहे थे ये गीत आप आए बाहर आई, इस फिल्म से मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ष 1964 में से रेडियो मेरा सबसे प्यारा दोस्त बना, जो इस जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक नहीं भूल पाए, और उसमें सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन विविध भारती सुरीली धड़कन है। जी हाँ, विविध भारती तो सुरीली धड़कन है ही, जो मेरे दिल के काफी करीब है। ये सुबह में कार्यक्रम जागो सुबह हो गई उठती है मेरे साथ, और छाय गीत कार्यक्रम के समापन के बाद सोती भी है मेरे साथ, जिससे मैं हर दिन अपने आप को तरोताजा महसूस करता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड से जब गीत सुनते थे तो कैसेटों के समय मैंने सीरीज की 320 कैसेट रिकॉर्ड से पुराने सदाबहार गीत भरवाए थे, बाद में 8 सीडी में डाउनलोड करवाए, फिर अब मेरे पास पेन ड्राइव में सेफ है सारे गीत इस रिकॉर्ड से, यहाँ तक कि गीतों का जो सुरीला सफ़र है वो तय किया है। एक और श्रोता ने करवटें बदलते रहे इस गीत की बात करी है, और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी इस जादुई और रूहानी इबारत ने फिजाओं में जैसे एक अलग सी मिठास घोल दी है, कोयल की कूक और वादियों में सुकून को समेटते हुए मधुवंती और बसंत बहार जैसे शास्त्रीय रागों का जिक्र, साथ ही मीना बाजार जैसी चमकदार दुनिया का एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसा कोलाज रचते हैं जो दिल को छू जाता है। आज इन शब्दों से गीत हो सकते हैं, जिंदगी, प्यार, नजराना, वादियां और तमाम शब्द जो हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्यार का नजराना, वादियां, सैर, मीना बाजार, बसंत बहार, रूठना, मौसम, फूल, कोयल की कूक, पाजेब आदि शब्द होंगे, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। वैसे आजकल ये बात भी है श्रोताओं कि देखिए कहीं कोई रूठे ना।

शोभा गुटू की आवाज में ये ठुमरी दादरा आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप आए तो जुड़ना हो रहा है आज। इबारत को पढ़कर आज दिल को थोड़ा सुकून मिला कि आज किन शब्दों से सजे हुए गीत होंगे। आज का सुरीला सफर इन शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। जिंदगी नजराना मिलो बना चले वादियां आजकल मौसम करवटें बाजार कोयल सज गीत किसी रूठे पाजीब की बात इतनी अंत में और प्रेम प्यार मुस्कुराहट के साथ समापन होगा। जी हाँ होगा तो और भी मौसम की भी बातें होंगी क्योंकि हाँ कोई भी मौसम हो श्रोताओ थोड़ा कष्टदायक तो होता है। जैसे बारिश के मौसम की ही बात करें या सर्दी के मौसम की ही बात करें या फिर गर्मी के मौसम की बात करें लेकिन हर मौसम का अपना लुत्फ है। हमें चाहे ये मौसम अच्छे लगें या न लगें शरीर को सुकून दें या न दें लेकिन इस मौसम के बारे में कभी कोयल से जाकर पूछिए इसके साथ ही जो पपीहे की पुकार है उससे पूछिए तो ये मौसम उनको कैसा लगता है। बड़ा सुहावना लगता है कोयल को और किसानों से पूछिए जो हमारे लिए मीठे मीठे आम बहुत सारे कह सकते हैं कि जैसे ढेर सी लगा देते हैं। और ये मौसम तमाम खूबसूरत फलों का भी होता है फूलों का भी होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी पहाड़ों पर जाओ तो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है वादियाँ। वादियों में अजब सा सम्मोहन है जो हमें खींचता है धुंधली सी वादियों में खो जाने का मन करता है। वादियों में जाओ तो न जाने कितने गीत जाने कितनी कविताएं मन में बजने लगती हैं। पहाड़ों को कभी गौर से देखा है प्रकृति के सारे रंग वहीं आकर सिमट गए हैं। जब गर्मी के दिन परवान पर होते तो मौसम की पाजेब ध्यान से सुनिए इसमें छुपे कलरव और कुदरत

रंग जो होते हैं वो समाये होते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है इस इबारत में शामिल शब्दों में, प्यार नजर आना जिंदगी मिलो चले सुकून दिल जैसे अनेक संज्ञा सदनाम विशेषण परक ही नहीं अभी तो क्रिया परक शब्दों के साथ ही संबोधन भी है और इस दृष्टिकोण से संभावित गीतों के चयन में ही पूरा दिन क्या और भी अधिक समय लग सकता है। फिर भी जितना समय है देखते हैं कितने लिख पाते हैं। और इसके आगे भी इन्होंने कुछ शब्दों के बारे में भी लिखा है कि कुछ शब्द जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। जी हाँ, वैसे भी आप देखें श्रोताओं, अगर अपने वाक्यों को भी देखें तो जीवन में बहुत सारे वाक्य बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी पुनरावृत्ति कई बार कई कई बार होती है।

श्रोताओं, हमने आपसे मीना बाजार के बारे में पूछा था, आज भी लगते हैं क्या ये मीना बाजार कहीं कहीं पर, और आपने क्या चीजें यहाँ से खरीदी हैं, अगर आप बताना चाहें तो आप जरूर बताएं। और आपके हालिया सफर के बारे में हमने पूछा था आपसे, यानी कि हाल में अगर आपने कोई सफर

अभिनेत्री रंजिता पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। हमने आपसे पूछा था मीना बाजार के बारे में श्रोताओं। जी हाँ, मीना बाजार तो आज भी लगते हैं। वैसे जो मीना बाजार की एक परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है, जो मुगल काल में ही शुरू हुई थी। और यहाँ अगर आप दिल्ली में देखें तो ये बाजार अभी भी लगता है। हस्तशिल्प, अगर कपड़े आप अच्छे अच्छे जो हाथ

सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आपकी शिरकत करने के लिए, आपके बातों के लिए, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट

0: बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहाँ 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आज इधर जो इंसिडेंट है हुआ है, उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से थ्रस्ट हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी उमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉक्टर रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम

0: गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
1: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम जी, और उनका भी योगदान रहा है जीत में।
1: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीज मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर अब हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी अब इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेड़े दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके 58, डीएमके 47, पीएमके 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या एआईडीएमके की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खासतौर पर नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था, उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया। और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन यंग

0: जनरेशन जेंजी जो है और युवा जो है उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
2: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

0: कोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, तर्ज थी हेमंत कुमार की। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। तीन देवियां इस फिल्म का गीत है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, मानो कहा।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मखदूम मोहिनुद्दीन की रचना आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म है चा चा चा।

चा चा चा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और यही थे आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम उपस्थित हैं। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: दीपा माहेश्वरी।
1: आप सभी को
2: हमारा नमस्कार।
1: कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल अच्छे हैं। और आप तो जहाँ जहाँ जाएंगी हम बस पीछे पीछे चलते चले आएंगे।
1: अरे वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी कि भाई क्या है ये कि जहाँ मैं जाती हूँ वही चली आती हो। देखो तुम यहाँ पर भी आ गई हो।
2: अब ये देखो ना, दोस्ती का प्यार है, आपका अपनापन है और सखी सहेली का कुछ जादू ही ऐसा है।
1: अच्छा।
2: ना जिस दिन आते हैं उस दिन बस अपनी जिस सखी के साथ हम अपने बाकी सभी सखियों से मिलने वाले हैं उनका पीछा करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, तो ऐसा पीछा तो अच्छा भी लगता है। खैर
2: हाँ,
1: जहाँ दोस्ती हो, प्यार हो, सम्मान हो, स्नेह हो, वहाँ अगर हम एक दूसरे का पीछा करते हैं तो वो एक अलग ही अद्भुत एहसास होता है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो
2: और कभी कभी आप भी तो आती हैं हमारे पीछे पीछे।
1: हम तो रोज ही आते हैं आपके पीछे ख्यालों में, आपने अच्छा? देखा नहीं है। हाँ
2: तो आज हमें भी ख्यालों में कुछ इस तरह से जाना पड़ेगा, मतलब गहराइयों में।
1: हाँ, वहाँ मैं मिलूंगी आपको। हाँ, उस मोड़ पर खड़ी हुई
2: बिल्कुल। और हमारे सारी सखियाँ, हमारे हाँ, सारे श्रोता भाई सभी से मुलाकात होगी।
1: बिल्कुल होगी। और आज के विषय क्या है ये तो बता दें हम।
2: बिल्कुल, चलिए तो फिर ये जो दुनिया है हमारे ख्यालों की, वहाँ से हम चल के निकलेंगे दिल की दुनिया में।
1: ठीक है,
2: दिल की माने या दुनिया की, ये बड़ी बात हमेशा कई बार कई स्थितियों में हमारे सामने आ जाती है। दिल कुछ और कहता है और दुनिया
1: कुछ और कहती है,
2: उनके रिवाज कुछ और होते हैं। तो बहुत सारे संदेश आए हैं लेकिन हाँ। और हम जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा वाकया भी बताइएगा कि कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपने दुनिया की मानी, या कहीं ऐसा कि आपने दुनिया से हट के अपने
1: दिल की मानी। बिल्कुल।
2: और यहाँ से इस गहराई से निकल के हम एक और गहराई में जाएंगे, वो है कोयले की दुनिया में। कोयला खनिक दिवस है आज, तो क्या जिम्मेदारियां उनकी होती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण और साथ में एक खतरा हुआ लिए हुए ये वाला जो
1: बहुत खतरनाक काम है,
2: है ना,
1: जिसे करना अंजाम देना बहुत मुश्किल है।
2: जी, कथा सुधा में भी हम कथा सुनेंगे, एक्ट्रेस का भाग 3 सुनेंगे।
1: अच्छा,
2: तो कहानी में आगे क्या होता है ये जानेंगे और बहुत सारे हमारे श्रोता इसका इंतजार भी कर रहे हैं। फिर वहां से चलेंगे बिहार।

0: बिहार? अरे क्यों? आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगेगा। लिट्टी चोखा मैंने बहुत समय से खाया भी नहीं है, तो चलो अच्छा है तुमने लिट्टी चोखा।
0: आप वहाँ जाएंगे ना तो आपके पीछे पीछे वहाँ भी हम
1: आएंगे। हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी कि वहाँ पर मैं आपके पीछे आने वाली हूँ।
0: ऐसा है?
1: हाँ,
0: तो देखते हैं कौन किसके पीछे है।
1: और इस गीत को भी सुन लेते हैं, देखें यहाँ कौन किसके पीछे है।
0: चलिए।

0: तो दीपा, अगर हम आपसे पूछे ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तुम क्या कहोगी?
1: आप हमारी सखी हो, आप हमारी प्रिय हो, जैसे हमारी सारी सखियां हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे ही हम प्यारे एक रिश्तों में गुथे हुए
1: हैं,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बहुत ही मेहनत कश तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, उनसे भी हमारा रिश्ता उतना ही गंभीर है, क्योंकि हम उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं, और तभी तो आज हम कोयला खनिक दिवस पर बात भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये

0: है एक खास आज का जो उनको सम्मान करने का दिन है। हम कोयला निकालने में उनके कठिन परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो खनन में काम करते हैं, जो हमारे देश के विकास और समृद्धि में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल दीपा, कोयला खनन कोई आसान काम नहीं है और खनिक अपना पूरा दिन खदानों से कोयला खोदने और निकालने में बिता देते हैं।
0: बिल्कुल, और 4 मई जो कि आज का दिन है ये मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस के रूप में। सिर्फ उत्सव ही नहीं है, मतलब एक कोई दिन रखने ही दिया है, बल्कि औद्योगिक क्रांति से चले आ रहे कोयला खनन के इतिहास को भी याद करने का दिन है। ये इस जो कठिन जो पेशा है इसमें योगदान देने वाले लोगों की मेहनत और उनके बलिदान को सम्मान देने का भी दिन है।
1: बिल्कुल, और ये विशेष अवसर पर मेहनती श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित दिन है, जो कोयला निकालने के लिए धरती की गहराई में उतरते हैं
0: जी।
1: और ये कोयला हमारे देश को ऊर्जा प्रदान करने, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण के लिए एक अमूल्य संसाधन भी है।
0: बिल्कुल, और ये दिन उन समर्पित कोयला खनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है, जो हमारे उद्योग और दैनिक जीवन में आराम करने के लिए इनके खनन कर इसका जो कोयले का इसका खनन करते हैं और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: और जो कोयला खनन के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता है ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के आवश्यक क्षेत्रों को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मंदाकिनी जी, और कोयला एक जीवाश्म ईंधनों में से एक है जो कि बहुत जरूरी है, जिसमें ना बहुत सारा कार्बन होता है, कार्बन निकलता है, तो कोयले और प्रदूषित सांस लेने की वजह से खनिकों को कभी कभी फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है और कभी कभी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो उसके प्रति प्रोत्साहन को भी
1: बढ़ाता है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं
0: जी। और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा खदान है जहाँ पे कि इस तरह से कोयला क्या या किसी और धातु का खनन होता हो, तो वहाँ आप अपने बच्चों को ले जाइए, खुद भी जाइए, देखिए सामने से कि किस तरह से और कितनी मुश्किल हालात में वो काम करते हैं। या फिर खनिकों की कड़ी मेहनत को समझना और उन्हें दिल से तो हम धन्यवाद कम से कम दे ही सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग
0: जी,
1: है ना,
0: तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होता है।

0: हाँ, तो दीपा बहुत ही सुंदर गीत था ये, और
1: जी
0: काला पत्थर फिल्म का गीत था ये, और ये
1: जी
0: फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना।
1: और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं
0: वो
1: वो
0: काम
1: रहते
0: करते
1: हैं, वो
0: हैं,
1: काम
0: काम
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं।
1: और यही बात एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे
0: श्रोताओं ने
1: श्रोताओं ने
0: लिखी है,
1: लिखी
0: एक
1: भी
0: श्रोता ये
1: जी।
0: भी लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है, और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं, और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर कोयला मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है, और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का ये दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज विश्व आज है खनिक दिवस।
1: खनिक दिवस,
0: हाँ
1: कोल कोल माइनस डे
0: दे
1: इसको
0: बिल्कुल।
1: अंग्रेजी में कहते हैं, और
0: कोयला खनिक दिवस इसको हिंदी में कहते
1: हिंदी में
0: हैं।
1: कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की
0: दुनिया
1: गहराइयों में।
0: में नहीं
1: और देखिए ना,
0: हाँ
1: बात एक कई बार

0: जाती है ना दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे।
1: है हर जगह है ये जुमला,
0: है ना,
1: हर परिस्थिति में। अरे भाई लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया के डर से। हाँ।
0: वही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं।
1: हाँ, बहुत सारे खाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है दीन दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी। बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना, और कहने के बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर ली तब भी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझकर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए, और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए
1: जो बरसों से हमारे यहाँ ढर्रा चल रहा है। अरे उसमें कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खास तौर से, कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है।
0: सही बात है,
1: ये देखिए ना उसके सपने हैं। अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते।
0: सही बात,
1: घर वाले भी कई बार हालांकि दीन दुनिया के डर से वो भी डर मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना, इस दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है।
0: बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब दिल की माने। तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए, या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई वहां आप बड़ों की बात को ले सकते हैं, उनका कोई पुराना अनुभव है उससे आप कुछ सीख ले करके
1: बिल्कुल
0: अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके
1: काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए
0: जी,
1: ना
0: जी।
1: ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर लिया, आप चाहे जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है जैसा तुमने कहा, और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपने पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं, है ना, दुनिया में नाम करना चाहते हैं, लीक से हटकर आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज।
0: बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है, ये पढ़ के बताना चाहती हूँ कि एक पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा
1: जा रहे थे
0: देश के घूमने के देश घूमने के लिए निकले थे। कभी बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है और
1: बेटा
0: पैदल चला रहा है। तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर के दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं तो लोग कहते कैसे निर्दय है, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पे बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार की बातें, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है।
1: बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में गाना है ना, दुनिया का ले लो मजा, दुनिया तुम्हारी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी हो गए हैं, हमने विद्रोह कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें तो आज भी कहा जाता है, देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती, उसको समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की चिंता ही नहीं है।
0: ये बात कहीं ऐसा नहीं है कि छोटे शहर, सब जगह है,
1: सब जगह है, ये हर जगह है। कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए है ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना ये है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले, हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और वहीं एक और संदेश आया है, ये कहती है कि जो दुनिया जो लोग

0: दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है, उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही है कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर है कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले।
0: चलिए।
2: ए
3: अरे
2: चुपके से दिल दे दे,
3: नहीं ते
2: नहीं ते

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गया।
1: और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले इतनी दूर, भेजोगे तो कैसे क्या होगा, पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है, जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते।
0: कितनी बड़ी बात कही है, इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते हैं।
1: बहुत सारे। और कभी कभी कोई एक लीक से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई
0: डिसीजन लेता है,
1: डिसीजन लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना।

0: बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है आप एक मौका तो दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: उसके दिल की सुनिए, अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने बच्चे का या विश्वास पे विश्वास कीजिए।
1: तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है, वो कैमरा लेके जाती है, घूमती है, दिल्ली में रहते थे वो, वहाँ उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही है।
0: और ये बात जहाँ पर कि दो बच्चियां हैं तो वहां पे बड़ी बात ये आ जाती है, हम इस बारे में बात और आगे करेंगे।
1: हाँ, अभी वक्त है एक अंतराल का।
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: तो बात हो रही थी कि जहाँ पर दो बच्चियाँ होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना। शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए, बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई, वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको जहाँ सिर्फ बच्चियां होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है,
0: बहुत दिक्कत आती है उनको, माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं, जो आप पर नजर है उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की, दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा, वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम। पैसा फैसला दिल से शुरू करो, लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो।
1: सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल के माने या दुनिया की, भाई समय समय पर दोनों के मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। जब जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए, आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए, बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल से उब गए तो हम दुनिया की सुन ले और दुनिया से उब गए तो दिल की सुने। जो सही होगा जीवन,
0: डिसीजन लेना वो बहुत जरूरी, वही कहा ना, विवेक से काम लेना होता है
1: जी।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है, ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहां दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकता है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहाँ दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए।
1: सही कहा आपने।
0: और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, आज एक कहानी है एक्ट्रेस जिसका कि हम सुनेंगे भाग 3।
0: तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी।
1: चलिए,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना,
4: दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते, उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया के

0: सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे, वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, हाँ ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
1: मैंने वकीलों से पूछ लिया है, एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना।
0: तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही।
2: कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।
0: विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगार दान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुभ्ध और उदास है। उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है,
3: क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी, कभी नहीं, कभी हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूं? हाँ अवश्य बना सकती हूं, क्यों नहीं बना सकती। इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूं? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव, असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास, मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं बना सकती। आह, ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है? अब केवल उसका

0: चिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पद चिन्ह।
1: रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा,
0: प्रेम सत्य है, सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों न यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती, नहीं नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है, और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं।
1: दाई ने आकर कहा,
2: बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए।
0: हाँ नहीं नहीं, जरा भी भूख नहीं है। सुनो, ऐसा करो तुम जाकर खा लो।
2: देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
0: अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना?
2: अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा।
1: दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे।
0: हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
1: तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए, गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहां थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था पर कांति कहां? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा,
0: कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी, सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए। हाँ ऐसा ही करती हूँ।
1: तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया,
0: कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है कुछ भी अनिष्ट हो सकता है।
1: इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा।
0: ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे, कुछ अनिष्ट

0: हो सकता है। ऐसा करती हूं, पत्र लिखती हूं।
1: वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी।
0: हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सके थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रीतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना। और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधू के लिए छोड़े जाती हूं। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूं। और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा।
1: ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। जो ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा।
0: माँ जी, उस पार नाव ले चलेगा क्या?
2: इतनी रात गए, नाव न जाई?
0: हाँ, रात है इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी। अब बोल, चलेगा?
1: मगर दुगुनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला,
2: सरकार उस पार कहाँ जाई है?
0: उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना।
2: मुदा इतनी रात गए, कौनो सवारी शिकारी न मिली?
0: कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो माझी। हाँ, उस पार पहुंचा दो।
1: मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्ज्वल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा।

सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है।
1: सही कहा आपने। और देखिए, एक संदेश ले ले क्या दिल की मानी।
0: हाँ वही तो
1: है ना, ये संदेश कह रहा है कि
0: संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते। मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती है। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की।
2: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूँ लेकिन करता हूँ अपने दिल की आवाज सुनकर।
0: क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की, यह तय करना कठिन हो जाता है। तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय ले। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है।
2: बिल्कुल। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग दुनिया का अनुभव का स्टेयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून खुशी और सुकून की हो वहां दिल की सुननी चाहिए, जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।
0: बिल्कुल, यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की, लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभचिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और जीवन में आगे चलते रहें।
2: बिल्कुल, अब तो हमें आगे बढ़ना है इस गीत के जरिए।
0: चलिए।

0: तो दीपा, कहानियाँ तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं, है ना?
1: और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती
0: है। हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहाँ दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है

0: हाँ तो दीपा, अब हम बिहार की सैर पर चलते हैं।
1: चलिए।
0: देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ की एक होटल की कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुँच गए। क्या स्वाद था पूछिए मत। और इसलिए दूसरे दिन भी वहाँ लिट्टी चोखा खाने पहुँच गए, जहाँ होटल की थाली के 200 देना पड़ता था, मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए।
1: क्या बात है भाई। अगर ऐसा पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम

0: गेहूं के आटे में 2-3 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंथ लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि 1 कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है, जैसे दाल बाटी की बाटी
1: बनाते हैं,
0: अच्छा, इसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उस पे भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो धीमी आंच पर ये 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक

0: बाटी की तरह बंद कर देना, जैसे दाल बाटी की बाटी
1: बनाते हैं
0: उस तरह
1: अच्छा,
0: से उसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उस पे भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो धीमी आंच पर ही 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो
1: अच्छा,
0: बैंगन के लिए जो जाली रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए। तो टमाटर भी जैसे ही ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा
1: निकाल लीजिए।
0: इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है और ये सब चीजों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए कि लिट्टी के, लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चौखा रखिए। चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है।
1: ये आपका अपना स्वाद है।
0: हाँ, ये आपका अपना स्वाद है, आप चाहे वैसे इसको
1: बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा।
0: बिल्कुल, चलिए पक्की बात।
1: तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत,
0: चलिए।

सुन दी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

0: धन्यवाद उदीपा। सखी सहेली कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और
1: दीपा माहेश्वरी को
0: आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस जी मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्ते, सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस जी मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी हाँ, स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप। त्वचा का मामला ऐसा है पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहाँ से कैसे कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए।
2: त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई बीमारी हो, समझिए लीवर में समझिए छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है। और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और वो भी कुछ काम करते हैं। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो है ही उसका काम। तो इट इज़ गॉट अ मल्टीपल फंक्शन एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज़्यादा है। देर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है।
1: जी।
2: जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा।
1: जी।
2: तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लिवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो।
1: डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद इतना विस्तृत विषय है तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वही हो सकता है।
1: कोशिश करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है।
2: अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब
1: पीली पीली
2: पीली या फीकी दिखाई देती है। जैसे फीकी जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है।
1: जी।
2: ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही
1: नाम
2: हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देर आर अदर डिसीजेज जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो जैसे अल्टीकेरिया बोलते हैं, एलर्जी कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े, वो ददोड़े भी अंदर की प्रॉब्लम से हो सकती है। एंड देर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज्यादा बढ़ गया तो मलेरिया बोलते हैं,
1: गमोरिया
2: उसको ही मलेरिया बोलते हैं। तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप, समझिए स्टेरॉइड खा रहे हो तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती है, विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है, आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है, तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा वो भी।
1: अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं,
2: दाग भी आते हैं चमड़ी पे।
1: थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते हैं लोग उसे सफेद दाग जैसा समझने लगते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं, तब इस तरह का कोई पेशेंट

0: जब आपके पास आता है तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं वो किस तरह से और क्या होती
1: है? देखिए क्या है, सफेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है। हालांकि हर सफेद दाग कुछ खराब नहीं होता और कोई भी सफेद दाग खराब नहीं होता। इनफैक्ट सफेद दाग की 3-4 वजह है, एक तो लेप्रसी, दूसरी विटिलिगो, थर्ड फंगल इन्फेक्शन। ये 3 मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रसी कुष्ठ रोग बोलते थे उसमें जो सफ़ेद चमड़ी आती थी, और तभी के ज़माने में पहले, मैं तो बोलूँ 50-60 साल 70 साल पहले, इसका इलाज इतना नहीं था। ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था और
0: ईश्वर का क्रोध समझकर उसको थोड़ा सा
1: उस चीज से ये सफेद दाग सभी उसी नजरिए से देखने लगे लोग अभी। वेदर इट इज विटिलिगो, जो सफेद दाग की बीमारी है,
0: ये विटिलिगो को थोड़ा सा समझाएंगे।
1: विटिलिगो
0: सफेद दाग
1: ही बोलते हैं, जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। उसमें तो मेलानिन जो रहती है, जो कलर बनाने की पेशी है, वो कम काम करती है। बस जैसे हमारे सफेद बाल हुए ऐसे ही सफेद चमड़ी हुई, इतनी सिंपल बीमारी है वो विटिलिगो। लेकिन लोगों के नजर में वो इतनी खराब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को। अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलत फहमी है विटिलिगो के बारे में।
0: कई बार हम देखते हैं कि बहुत सफेद सफेद से लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो विटिलिगो।
1: वो नहीं, वो एल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन, एल्बिनिज्म अलग है वो। उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज है। पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, वो एल्बिनिज्म। पूरे शरीर उनकी, मतलब पुतली भी व्हाइट है, बाल भी व्हाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफेद दाग की बीमारी, जो कोड बोलते हैं मेरे ख्याल से, नॉर्मल लैंग्वेज में कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो वो वैसा नहीं है, लेप्रसी अलग चीज है, कोड अलग चीज है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको सफेद दाग कहा जाता है, उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं, सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। मैंने जैसे बताया सफेद बाल जैसी चीज है, उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ दिखने में वो सफेद दिखता है। और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफेद दाग की बीमारी है, जो लेप्रसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है, वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
0: किस तरह का नुकसान?
1: ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लिवर में प्रॉब्लम कर सकता है, समझे, स्किन में जब वो सेंसेशंस को लॉस होते तो जख्म जाता है, जख्म होता है वो बोन्स खा जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्ट्रोक के, जैसे हाथ वगैरह गलने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाने लगती है, जगह जगह पे फोड़िया आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल
0: मवाद और ये सारी
1: टिपिकल लियोनाइन फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा। तो ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है, ये लेप्रसी के जो
0: ये अब लेप्रसी का इलाज कहां तक?
1: लेप्रसी का इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अभी तो लेप्रसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में, अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो। ये जो लेप्रसी की जो डिसीज है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो
0: अनियता है
1: वो उसके वजह से, हाँ उसके वजह से ये सफेद दाग
0: गलत नजरों से
1: देखा जाता है। और सफेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफेद दाग होता है, बट लोगों को सब लगता है कहीं ये लेप्रसी तो नहीं है, बाकी कुछ भी।
0: जो फंगल इन्फेक्शन है
1: वो भी इजीली ट्रीटेबल है,
0: ठीक होता है, लेकिन सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है?
1: बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है, बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
0: प्रॉब्लम नहीं,
1: लोगों के मन में क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नजरिया उस पर अलग हो जाता है। इलाज तो करेंगे, लेकिन कोई कोई डर के आते हैं
0: जी
1: कि कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं। दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज नॉट लेप्रसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुटअप करूँ तो लोगों के मन में सफेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रसी, वो लेप्रसी तो नहीं है, करते करते सब सफेद दाग को लेप्रसी की नजरिए से देख रहे हैं। अभी जो सफेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिगो की वजह से हो, वही चीज में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है। कोई भी सफेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पुअर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है।
0: तो सर नजर का टीका,
1: हाँ, कितना भी काला दाग होने दीजिए आप, चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन सफेद दाग ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है।
0: अभी लेप्रसी गलत धारणाएं निकलनी
1: चाहिए। कोई भी सफेद दाग मेरे ख्याल से अभी लेप्रसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए, और जिस चीज का इलाज नहीं होता उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जैसे विटिलिगो उससे कुछ नहीं होने वाला।
0: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि सफेद दाग जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुष्ठ रोग कोड ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है। किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें और निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी तुरंत मैं एक निश्चिंत होने का एक और तरीका बताता हूं। कोई

0: डॉक्टर साहब, ये गाना अभी सुन रहे थे जब, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुन रहा था। सफेद रंग की बात कर रहे थे, ये थोड़ा गेरुआ होने की बात कर रहे थे,
1: कलरफुल हो रहा है अभी थोड़ा।
0: अब मोहब्बत में तो आदमी किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है, बस शर्त इतनी होती है कि उसका महबूब उसके करीब होना चाहिए। आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हो, अब डॉक्टर साहब बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है। हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ, उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया किसी तरह का। अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ पेड़ भी होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कुछ चीजें होती हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी?
1: ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं एकदम ही स्ट्रांग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्माटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिर्फ जो फोड़ियाँ फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है, और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में है जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीज है, हालांकि हर्पीज तो अंदरूनी वायरस से होता है बट हर्पीज भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है।
0: चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं अगर ऐसी मान्यता है?
1: या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत, अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग है वो नहीं जाते थे। चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं,
0: वो नेचुरली चले जाते हैं,
1: नेचुरली चले जाते हैं, और अगर
0: करना पड़ता है
1: कुछ नहीं, नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं।
0: किस तरह का इलाज होता है?
1: इलाज राइट फ्रॉम मलम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग।
0: अब आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर, तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूं, चमड़ी जल सकती है, वो तो जल से ही तो ऐसे भी जलती है, जल सकती है, किसी भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग, कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स। तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
0: तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले,
1: पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो वाली चीजें जो समझिए हम कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और इरिटेंट डर्माटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरी चीज की, और इरिटेंट डर्माटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो। सो दैट्स एन इरिटेंट डर्माटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज करें

0: या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच ट्रैप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी किसी को बिंदी के जो गम रहती है जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइस की हो सकती है, हेयर डाई।
1: डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे हेयर डाई पे, लेकिन इस समय यहाँ हम कौन सा गाना सुन सकते हैं?
0: थ्री इडियट्स की जुबी डुबी सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: चलिए, ये डूबी डूबी के गाने के बाद जो आप बात कर रहे थे हेयर डाई के,
1: हेयर डाई एलर्जीज,
0: अब हम आ गए एक ऐसी चर्चा पे है जो बड़ी कॉमन सी, मतलब लोगों के बीच में बहुत सी बालों को लेके और बालों की चमड़ी को लेके और फिर उससे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, और तू ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे।
1: ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर

0: जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्माटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस पे ही अटके हुए हैं। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनिलीन डायामाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है,
1: उसके
0: बिना हेयर डाई 99% आई वुड से कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है
1: जी।
0: थोड़ी बहुत अभी पीपीडी फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनिलीन डायामाइन की एलर्जी होती है
1: जी।
0: ये जो एलर्जी होती है इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा आंखें ऐसे सूज सकती है, फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है, किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई डाले है तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है,
1: भले उसका आंखों से कॉन्टेक्ट
0: ना हो तो उसके आंखें सूज जाना, आंखों के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलेट्स है वो सूज जाना, हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलेट्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुजा रहा है, लाल हो गया है। यस बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग, इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए, टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना नहीं होगा, अगर कंटिन्यूस एलर्जी है तो पेशेंट 2-3 बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा
1: जी।
0: देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइज है, बहुत सारी अलग है।
1: और ये जो माथे का काला होना
0: ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज्यादा होने लगती है, तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी, वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए।
1: मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज मत करो।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जितना वो काला हो चुका है तो वो क्या आप ठीक कर सकते हैं?
0: वो ठीक कर सकते हैं मतलब उसका इलाज हो सकता है। देखिए ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये हाँ या ना में जवाब किसी भी बीमारी को नहीं दे सकते हम लोग
1: जी।
0: हाँ बट कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे उनका कॉज हटा दिया है तो शरीर भी अपना करेक्टिव मैकेनिज्म शुरू कर देता है। शरीर भी एक बहुत अच्छा डॉक्टर है खुद का, अंदरूनी, अगर हम छेड़े नहीं तो शरीर अपने आप काम करने लगता है, बट शरीर की एक क्षमता होती है उतनी देर तक ही कर सकता है, तो हम जो है उनको असिस्ट करेंगे और वो कलर जाने में मदद करेंगे, लेकिन उसको हेयर डाई अवॉइड करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: हेयर डाई के बारे में भी ये है कि ये जो सफेद बाल है, अगेन इट्स जस्ट अ परसेप्शन आई फील, सफेद बाल में क्या प्रॉब्लम है अभी? तो वो भी देखने का नजरिया है सिर्फ। अभी फॉरेनर्स लोग सफेद बाल आते हैं तो हम तो खुश होते हैं, हमारे यहाँ सफेद बाल को बुढ़ापा की नजर माने जाते हैं, मतलब बुढ़ापा की वोट निशानी मानी जाती है। तो अगर हम वापस ये परसेप्शन बदल दे कि कल को अगर समझिए सफेद बाल की फैशन आ जाए तो डाई की जरूरत ही नहीं पड़े। वी हैव टू बी हैप्पी विद अवर बॉडी, अवर कलर, अवर हेयर, क्वांटिटी ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, ये सब चीजें जो है नैसर्गिक है, नेचुरली दिया हुए चीज है, तो उसको जरा खुश
1: अभी खुश होने की बात हम और भी करेंगे। फिलहाल एक खुश होने का एक और नुस्खा है,
0: इसके लिए एक गाना होना चाहिए, डियर जिंदगी वाला, लव यू जिंदगी,
1: लव यू।

0: डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, जो ईश्वर ने हमें जैसा बना के भेजा है उससे प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो,
1: सब चीज सही करिए, थोड़ा एकदम डिविएट मत होजिए, और जो शरीर है उसका आनंद लीजिए। एवरीबडी इज मेड इन अ डिफरेंट वे, सभी लोग को एक ही साइज का 38 नंबर का पैंट एंड 42 नंबर का शर्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एंड डोंट बी अनहैप्पी विथ योर बॉडी, ट्राई टू बी फिट। फिट मीनिंग अपनी जो रोजमर्रा की काम है उसे करने की क्षमता होनी चाहिए। फिटनेस का आजकल डेफिनेशन अलग हो गया है। फिटनेस तो मतलब सिक्स पैक फिटनेस, शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए या बाल काले होने चाहिए, घने बाल, ये फिटनेस नहीं होती है
0: जी।
1: फिटनेस वो होती है जो अपने काम करने की क्षमता बनाए रहे। जो अगर टीचर रहेगा तो उसकी फिटनेस है कि उसका बुद्धि शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो अगर सिक्स पैक बना के खड़ा हो जाएगा वहां तो उसको और कुछ पढ़ाई नहीं किया तो वो फिट नहीं रहा।
0: फिटनेस का मतलब ये है कि आप सुबह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें, अपने काम को खुशी खुशी करें। तो डॉक्टर साहब, अब असंतुलित जीवन जीता है उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा, त्वचा पे कौन कौन सा असर पड़ता है?
1: त्वचा भी एक ऑर्गन है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, और अगर हम लोग हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा। जैसे अभी लाइफस्टाइल में बोलेंगे तो बराबर से नहीं सोना, विच इज नाउ बिकम अ फैशन। अभी जो ड्यूटीज रहती है वो अलग अलग ड्यूटीज होती है, किसी को अमेरिकन शिफ्ट, किसी को ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट, तो 3 बजे रात को जाता है और 7 बजे आता है और 3 घंटा सोता है, फिर खाना खाता है 2 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटा सोता है, ऐसा नहीं चलेगा। जंक फूड खाना, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, जैसे स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजों से सभी ऑर्गन्स पे राइट फ्रॉम हार्ट टू द स्किन अफेक्ट होता है। अब स्किन पे आप पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो झुर्रियां पड़ जाएंगी और फिर थोड़े दिन का परेशान चेहरा ही दिखेगा, और रिंकल्स आ जाएंगे शरीर पे, थोड़े धब्बे पड़ने लगेंगे, जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी, ग्लो चली जाएगी। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मुझे ग्लो चाहिए, ग्लो चाहिए, उनको लगता है कुछ मलम दे दूंगा तो ग्लो आ जाएगा। पहले अंदर से ग्लो होनी चाहिए, बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है ये बात, लेकिन अंदर से नींद अच्छी रहनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, खाना खुराक अच्छी रहनी चाहिए,
0: और नीचे कालापन आ जाता है।
1: यस, आंखों के नीचे काला, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं, और पोल्यूशन से थोड़ा सा बचे, धूप से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे अपने आप को।
0: कुछ चीजें ऐसी हैं, अब कोई धूप में काम करने वाला बंदा है
1: या
0: उसके लिए फिर वो क्या कर सकता?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप, एक्चुअली अभी धूप में जो काम करता है बंदा उसके लिए वो काम ही है, तो ही इज यूज टू दैट, तो उसको चलेगा। लेकिन धूप में ऐसा है ना कि फॉरेन कंट्रीज में धूप से कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, और आई वुड से पूरी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है, तो किधर अमेरिका में अगर धूप में कोई काम करता है उसे कैंसर होती है, तो इंडिया वाला बेचारा जो खुदाई करता है वो भी सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्किन बनी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसमें कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत कम चांसेस है, तो धूप में जो काम करता है उसका चमड़ी काला हो सकता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम है।
0: स्किन कैंसर, ये एक बड़ा अलग सा शब्द है।
1: यस,
0: स्किन कैंसर एक ऐसा है कि वो तो पूरा शरीर

0: से ढका है। अब वो बंदे को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं
1: आपको आप किस तरह से ये क्या हो रहा है ना, कैंसर शब्द सुनते ही
0: जी
1: वो जो एक डर पैदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्किन कैंसर, तो आपके मन में यही आ गया होगा कि स्किन कैंसर पूरी स्किन में फैल जाएगा, स्किन जल जाएगी एंड ऑल दैट। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। स्किन कैंसर्स आर, आई वुड से, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट दे आर द सेफेस्ट कैंसर्स। जैसे अभी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, दो चीज जो है वो उसी जगह पे इफेक्ट करती है जहां पे हुई वहीं पे इफेक्ट करती है। मैं आई डोंट नो वेदर आई एम पुटिंग इट राइट, जहां पे समझिए एक छोटा सा दाग हुआ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो या बेसल सेल कार्सिनोमा हो, तो वो उतनी जगह को अफेक्ट करता है, न कि वो किधर अंदर फैल जाएगा, इतना नहीं फैलता है। और उसका ट्रीटमेंट है कि एक एक इंच उसके अराउंड स्किन को निकाल दिया जाए तो उसके ट्रीटमेंट 100% हो गई। उसके साथ में मेलानोमास है, मेलानोमास करके कैंसर से जो फैल सकती है अंदर,
0: तो ये जो फैलती है तो किस तरह से डैमेज करती है
1: वो डैमेज, फिर अंदर गया तो लिवर में सब, जैसा हमारे कोई बोन के कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो या लिवर के कैंसर हो, कैसे फैलती है वैसे, एक बार फैल गई तो सब एक ही चीज है।
0: ओके।
1: और भी एक हाथ दो कैंसर जो काफी फास्ट फैलते हैं, बट दोज आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो स्किन कैंसर से ये फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जहां पे उनकी जो स्किन टाइप है टाइप 1 टाइप 2, मतलब गोरी जो चमड़ी रहती है, वो धूप से बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्किन जो है धूप से बचने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ, सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन ऑन आवर स्किन।
0: विदेशों में
1: उनका जो सन बात लेने का आइडिया ही डिफरेंट है, वो धूप को देखते नहीं बहुत दिन तक, उनके पास पूरी ठंडी का माहौल रहता है, उनको तो क्या 18-20 डिग्री बोले तो भी गर्मी होने लगी तो आते हैं आराम से कपड़े वपड़े निकाल के बीच पे सो जाते हैं और सन बात लेते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। ये ज्यादातर ये धूप का आनंद लेने वाली बात है और अपने आप को टैन करने की थोड़ी प्रयास चलती है उनकी। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब गोरे होना चाहते हैं, वहाँ उन लोग थोड़ा सा रंग लाना चाहते हैं।
0: चलिए इसी विषय पे अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन फिलहाल एक रीली सी किरण की जरूरत है इस समय।
1: दिल धड़कने दो का वो गाना सुना दीजिए,
0: गल्ला गुड़िया।
1: हाँ हाँ,
0: तो चलिए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, जब हम और आप बात कर रहे थे गोरे और काले की, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की।
1: यस,
0: लो हर कोई गोरा होना चाहता है और काले रंग को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो गोरा है वो बड़ा अच्छा
1: सुंदर दिखने के लिए। मैं तो बोलूंगा कोई भी रंग चलेगा
0: जी,
1: सुंदर दिखना है तो स्किन का जो है टेक्सचर और उसकी जो क्वालिटीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन द कलर ऑफ इट।
0: तो आपके पास ऐसे मरीज भी आते होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कोई लेजर का कोई अगर कोई तरीका हो या कोई दवाई ऐसी हो कि जिससे हम गोरे हो जाएं?
1: अरे गोरे होने की तो 100% डिमांड होती है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता है जो डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसको अगर मैं बोलूं ना गोरा होने का दवाई दूं क्या, वो बोलता है मुझे दे दीजिए मैं गोरा होना चाहता हूँ।
0: कितने समय तक असर में रहता है?
1: जब तक उसका असर रहेगा 1-2 साल तक, तब तक वो ठीक रहेगा। बाकी जैसे आप धूप में गए और जैसे हमारी शरीर की मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन को बना के फेंकने लगी तो कलर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जो शरीर की जो पेशी है वो तो वैसे ही रह गई।
0: हाँ, अलग अलग जो त्योहार आते हैं चाहे वो दिवाली हो, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका सीधा कॉन्टेक्ट आपके स्किन से है, रंग जो है वो आपके पूरे शरीर को खराब कर, तो ये कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां एक तो दूर करनी है, दूसरा होली में मान लीजिए इस तरह के कलर हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: होली के बारे में तो कलर नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से अभी यूज होते जा रहा है। कलर दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मैंने बताया था पहले इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उस चीज का एलर्जी हो सकता है या तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। वो जो कलर्स हवा में उड़ती है अंदर इनहेल किया जाता है तो लंग्स में जाके अस्थमेटिक पेशेंटों को ज़्यादा तकलीफ देगा, खांसी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, आंखों पे उठ के कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, खुजली आएगी, फिर लाली होगी और स्किन पीलिंग होने लगेगा।
0: वो क्योर हो जाता है?
1: वो तो एलर्जी जैसा है, क्योर होगा मतलब स्किन जल जाएगी, फिर वो जला हुआ स्किन जैसा हील होगा, 10-15-20 दिन लगेंगे
0: जी।
1: अपने आप हीलिंग प्रोसेस होगी, फिर दाग भी पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते, ऐसा है। जख्म जैसी बात है, ये
0: वेल्डिंग कर रहा है बंदा उसके ऊपर कुछ खास तरह की रॉड यूज करते हैं।
1: वेल्डिंग का तो क्या ना, छींटे उड़ेंगे तो जलता है, बर्न्स होते हैं वो, इट इज लाइक एनी अदर बर्न्स, बट वेल्डिंग का जो बर्न्स है वो डीप बर्न्स रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, बाकी उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो एक्सटर्नल जो होती है ना वो क्योर हो जाता है, लेकिन दाग कितना छोड़ेगा वो पता नहीं है।
0: और जब बात हमने होली की है
1: तो आज तो
0: एक सज्जन है जो कह रहे हैं कि
1: आज नहीं छोड़ेंगे, फिर तो कटी पतंग वाली आज नहीं छोड़ेंगे।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेले

0: तो डॉक्टर साहब ये होली तो इन्होंने मना ली, चलते चलते आप अपनी त्वचा को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके सिंपल नुस्खे एक डॉक्टर जो है खास तौर पे चर्म रोग विशेषज्ञ क्या देगा?
1: आपका आपका सवाल अगर मैं वापस रिफ्रेश करूं तो आपका कहना है कि एक हेल्दी स्किन के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? वो इंटरनल फैक्टर्स है, हमारी खुराक, अच्छे से खाइए, नींद, हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीजिए और

0: स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो ये सब चीज़ों से अंदरूनी, यू नो द स्किन इज़ मोर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नली आप पोल्यूशन को अवॉइड करिए। अभी अवॉइड कैसे करेंगे, आप पोल्यूशन वाली जगह पे मत जाइए ज़्यादा, और अगर आप जा रहे हैं बाइक वगैरह जा तो एक अच्छे से जैकेट या
1: चेहरे पे भी कुछ
0: ऐसा कुछ कवर कर लीजिए ताकि वो पोल्यूशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। धूप ऐसी चीज़ है जो फोटो एजिंग बोलते हैं, धूप से थोड़ी सी एजिंग जल्दी होती है धूप की जो इफेक्ट है, बट धूप के प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो जितना हो सके उतना धूप से थोड़ा बचिए, छतरी लेके जाइए या कुछ मास्क डाल लीजिए।
1: तो डॉक्टर साहब, आप ये जो धूप से बचने की बात कर रहे हैं, अब कोई अगर मजबूरी में नहीं था, छाता नहीं लगा सकता, उसे काम करना है, अभी आज मुझे जाना ही है, अब मुझे निकलना है, छाता नहीं है, तेज धूप है, तो उसका कोई और उपाय है?
0: धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन एक उपाय है, बट सनस्क्रीन के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया जाए, सही टाइम तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के, हर दो दो घंटे में डालना पड़ता है, 30-50 SPF के जितना रहना चाहिए, और ये करोगे तो ही वो धूप से बचाएगा, नहीं तो ये सिर्फ एक ऊपर की क्रीम लगा के आप संतुष्ट होकर जा रहे हो, बाकी उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज कर रहे हो तो सही मात्रा में, सही टाइम तक और सही तरीके से यूज करेंगे तो वो उपयोगी होगा। और धूप से बचना ही है तो कैप्स है, हैट्स है, अम्ब्रेलाज है, दुपट्टा है।
1: दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे त्वचा की देखभाल कितनी जरूरी है और किन किन चीजों से जरूरी है। ये बात सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से आपने सुनी। और अब डॉक्टर साहब, चलते चलते एक गाना सुन लें, समय तो हमारे पास ज्यादा है नहीं।
0: ये सुल्तान पिक्चर का जग घूमिया हो जाए।

0: तो दोस्तों, जग को घूमना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखिए। जैसा कि गाने से पहले डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बताई, सारी बातों के साथ अपने आप को निष्फिक्र रखते हुए मजे से जग घूमिए। और अब फिलहाल डॉक्टर साहब, आज का वक्त तो यहीं पूरा हुआ चाहता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी और बहुत सी उपयोगी चीजें उन्हें मालूम हुई होंगी। तो विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच। जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, आराम से रहिए।
2: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। बातचीत कर रहे थे अमर कांत दुबे और बातचीत का विषय त्वचा के रोग और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंधल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

अभिवादन हमारी अभिवादन हमारी सभी सुनने वाली हमें चाहने वाली सखियों का। पहनू हर रोज की तरह आज भी हम हाजिर हो चुके हैं समय पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत लेकर, और आज इसे लेकर आई हैं आपकी रेडियो सखी अनामिका। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं कुछ खास और दिलचस्प विषयों से कार्यक्रम की शुरुआत। सखियों, कुछ ही दिनों में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और फिर पूरा दिन बच्चे आपके साथ रहेंगे। कुछ ननिहाल जाएंगे, कुछ घूमने फिरने के लिए, कुछ नई और ठंडी जगहों पर अपनी छुट्टियां बिताने जाएंगे। लेकिन वहां भी हम कितने दिन घूमेंगे, 5 दिन, 10 दिन या फिर 15 दिन? फिर तो लौटकर हमें वापस अपने घर ही आना है। तो क्यों ना हम इन छुट्टियों में बच्चों को कुछ कौशल सिखाने की क्लासेस दिलवा दें या फिर कुछ नए और अच्छे कार्य सिखाए जिससे वो एक अच्छा इंसान भी बन सके और उसके अंदर एक कौशलता विकसित हो सके। बहनों, आज का आधुनिक समय तो आप जानते ही हैं कि कितना तकनीक से भरा है। ज़्यादातर बच्चे अपना समय मोबाइल, TV, वीडियो गेम्स और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर ही गुजारते हैं, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को कुछ अच्छे और तकनीकी से दूर करने वाले काम सिखाएं, जिनसे उनका शारीरिक विकास भी हो और अन्य चीज़ों में भी उनकी रुचि बढ़े। बच्चों की छुट्टियां बहुत महत्वपूर्ण समय है जब वो कुछ अच्छा और बेहतर सीख सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करने के लिए बच्चों को एक नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। उन्हें सुबह जल्दी उठकर योग करने की आदत डलवाएं, संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करवाएं, बाहर मैदान या बगीचों में खेलने के लिए लेकर जाएं और संगीत से उनका परिचय कराएं। सखियों, अपने बच्चों की पसंद जानने की कोशिश करें। अगर उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना बहुत अच्छा लगता है तो उसकी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करें और उसे संगीत की क्लासेस दिलवाएं। इसके अलावा बच्चों को डांस, पेंटिंग, स्विमिंग या अन्य किसी एक्टिविटी में रुचि हो तो उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें इन सब क्लासेस में दाखिला दिलवाएं, ताकि वो अच्छे से अपना मनपसंद काम सीखें और भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें। साथ ही अपने समय का सदुपयोग करके रुचि के कार्यों में मन लगा सके। बच्चों की पसंदीदा चीज़ों में और अधिक ज्ञान लेने से उनमें आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होती है और वे चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। सखियों, इन सब के अलावा बच्चे अगर कुछ और इंटरेस्ट रखते हों तो आप उन्हें गाइड कर सकती हैं। बहुत से बच्चे शारीरिक तो बहुत से बच्चे मानसिकता से संबंधित चीज़ें सीखना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा किसी चीज़ में बहुत अच्छा है तो उसे उसमें निखारने की कोशिश करिए, ताकि वह आगे बढ़कर चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन करे, उसका मार्गदर्शन करे और उसका हौसला बढ़ाए। इसके अलावा बच्चों को आप उनकी छुट्टियों का सदुपयोग करना कुछ अच्छी बातें सिखाकर भी कर सकती हैं, जैसे कि घर को साफ रखना, पौधों में पानी देना, घर के छोटे छोटे कामों में बड़ों की हेल्प करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने आसपास की जगहों पर वृक्ष लगाना और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना सिखाना आदि। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बच्चों को आप नई भाषाओं का ज्ञान भी करवा सकती हैं, ताकि वे अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं की जानकारी भी हासिल कर सके। सखियों, बातों का सिलसिला तो आपसे यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच चलिए सुनते हैं ये गीत।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

के बाद अब हम कार्यक्रम के अगले विषय पर चलते हैं। भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए और कमजोर वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं। आज अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, इन्हीं पर आपको जानकारी देते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी आदि समुदाय आते हैं, इनके लिए सरकार ने शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित की हैं। चलिए इनके बारे में आपको जानकारी को देते हैं और बढ़ाते हैं आपकी कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो बताइएगा। जैसे शैक्षिक सशक्तिकरण योजना है, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 1 से 10 तक की छात्राओं के लिए उपलब्ध योजना जिसमें सभी कक्षा 1 से 10वीं तक के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं जो उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और उज्जवल भविष्य की ओर आगे लेकर जाएंगी। हमारी अगली योजना है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो कक्षा 11 से लेकर PhD तक की पढ़ाई के लिए प्रदान की जाती है और छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए प्रोत्साहित करती है। मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना जो तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है जिससे बच्चे तकनीक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई आसानी से कर सके। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना ये उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति है। बहनों, आर्थिक और रोजगार सशक्तिकरण के लिए भी अल्पसंख्यकों को बहुत सी योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना जिसमें कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। छोटे व्यवसायों, कृषि और तकनीकी विकास हेतु कम ब्याज दर पर छोटे छोटे ऋण योजना अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विशेष ध्यान ये योजना भी शुरू की गई है। बुनियादी ढांचे और विकास के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जिसमें स्कूल, हॉस्टल, ITI, स्वास्थ्य केंद्र और पॉलिटेक्निक सुविधाएँ प्रदान करना है। अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। आइए फिर से हम एक गीत की ओर चलते हैं और फिर करवाते हैं आपको आगे की जानकारी से रूबरू।

का मौसम सखियो गर्मी का मौसम केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी कठिन समय होता है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण पक्षियों को भोजन और पानी ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे समय में यदि हम अपने घर की छत, बालकनी, आंगन या खिड़की के पास पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें तो ये एक बहुत अच्छा और पुण्य का कार्य माना जाता है। गर्मियों में पानी की कमी होने के कारण कई पक्षी प्यास से परेशान हो जाते हैं। यदि हम मिट्टी के बर्तन या किसी साफ पात्र में पानी भरकर रखें और साथ में बाजरा, चावल या गेहूं या अन्य अनाज के दाने रखें तो पक्षियों को बहुत राहत मिलती है। जब पक्षी हमारे घर के आसपास आकर दाना चुगते हैं और पानी पीते हैं तो मन को बहुत ही प्रसन्नता और शांति मिलती है। इससे हमारे बच्चों में भी जीव जंतुओं के प्रति दया, प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। गर्मियों में नदियाँ, तालाब और छोटे जल स्रोत सूखने लगते हैं। ऐसे में बहनों पक्षियों को पानी की तलाश में दूर दूर तक उड़ना पड़ता है। कई बार उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता जिससे उनकी जान पर भी बन आती है। इसीलिए केवल उनके लिए जल उपलब्ध करवाना पर्याप्त नहीं है बल्कि ये भी ध्यान रखें कि वो रोज़ बदला जाए और पात्र कभी सूखे ना हो। उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करके हम एक अच्छे काम के साथ पर्यावरण को बचाने में भी योगदान दे पाएंगे। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करके हम मानवता, करुणा और प्रेम का प्रदर्शन उन बेजुबानों के लिए कर पाएंगे जो इस पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पंछियों, प्रकृति की बात हो और उस पर कोई मधुर गीतान ना हो।

सखियों, इसी गीत के साथ मैं आपके रेडियो सखी अनामिका लेती हूँ आपसे विदा। इस अटूट वादे के साथ की कार्यक्रम का समय शाम 5 बजे हर दिन सुनना ना भूले। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम महिला जगत। अपनी सखी को दीजिए विदा। नमस्कार सखियों।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी अलवर का ये सरीज का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भारती और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। कल की हार को आज पर मत आने दीजिए। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए कि मुश्किलें भी छोटी लगने लगे, और हौसला कभी कम ना होने दीजिए। दोस्तों, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक तो वो जो वो दुनिया को दिखाता है और एक वो जो वो वास्तव में होता है। हम संसार के सामने एक मुखौटा लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं या कहें जब खुद के साथ होते हैं तो हम एकदम रियल होते हैं। लेकिन दोस्तों, एकांत में भी हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानो सारा संसार हमें देख रहा हो। पर सवाल ये है कि क्या सच में कोई देख रहा होता है या फिर कोई और ही हमें देख रहा होता है।

जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने असली रूप में होते हैं, ना कोई फिल्टर ना कोई दिखावा। और दोस्तों वही पल होता है जो डिसाइड करता है कि हम इंसान कैसे हैं, क्योंकि दुनिया के सामने अच्छा बनना आसान है पर खुद के सामने सच्चा बनना बहुत मुश्किल। आप ही सोचिए दोस्तों, जब कोई नहीं देख रहा होता तब हम क्या करते हैं? क्या हम वही इंसान रहते हैं जो हम दुनिया को दिखाते हैं? एकांत अकेलापन नहीं होता बल्कि ये एक आईना होता है जहां हम खुद को असल रूप में देख पाते हैं। और अगर उस आईने में हम खुद को देख पाते हैं और खुद से हम संतुष्ट हो पाते हैं तो समझ लीजिए कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। करैक्टर वो नहीं जो भीड़ में दिखे, करैक्टर वो है जो अकेले में दिखे। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी अगर आप सही हो तब आप सच में सही हो। दोस्तों क्या होता है कि भीड़ में हम अपने वर्ड्स, अपने जो भी चीज़ हम बोलना चाहते हैं वो सब चूज़ करके बोलते हैं, अपनी आदतें व्यवहार सब कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी एक साफ़ सुथरी सी इमेज बनाते हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि कोई नहीं देख रहा तो हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। क्या उस समय भी हमें अपने रूल्स क्या हम फॉलो करते हैं या फिर लापरवाही करते हैं? हम सोचते हैं कि कोई है थोड़ी यहाँ, छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों फ़र्क पड़ता है और सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो फ़र्क पड़ता है वो आपको खुद को ही पड़ता है। क्योंकि उस समय आप अपने वैल्यूज से कंप्रोमाइज़ करते हो और मन से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ये तुम नहीं हो। लेकिन दोस्तों हम अंदर की आवाज़ को इग्नोर मार देते हैं, जो कि धीमी होती है, हमें सुनाई नहीं देती या हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो कभी गलत नहीं होती। और अगर हमने उस आवाज़ को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम जैसे हैं वैसे बने रहें, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। तो चलिए फिर यहाँ सुनते हैं एक प्यारा सा सुंदर सा गीत।

दोस्तों, अगर आपने भी 12वीं साइंस पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट से पास की है और आपको लैब रिसर्च या इनोवेशन में रुचि है तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हेल्थ, फार्मा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री तक हर जगह हो रहा है और इस फील्ड में करियर के कई मौके आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि 12वीं के बाद बायोटेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाएं। दोस्तों, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मेल सिखाया जाता है। इसमें आप सीखते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स और जीन का यूज करके नई दवाइयों और वैक्सीन, फसलें और प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। 12वीं में साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है, कम से कम 50% से 60% मार्क्स होने उसमें जरूरी है। कुछ कॉलेज मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं जबकि कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल होती है और इसमें कई सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं जैसे जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। आज के दौर में बायोटेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको कई फायदे होते हैं। हेल्थ और मेडिकल फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। रिसर्च और डेवलपमेंट में करियर आप बना सकते हैं। विदेश में पढ़ाई या फिर जॉब के इसमें चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से भी जुड़ने का आपको मौका मिलता है। दोस्तों, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपके पास कई करियर ऑप्शन होते हैं जैसे कि लैब टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जॉब, फूड और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और बायोटेक कंपनियों में भी काम करने का आपको मौका मिलता है।

दोस्तों अब बताते हैं आपको कि हाल में कौन सी भर्ती निकली हुई है और आप किस में आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC भारत सरकार की प्रमुख भर्ती एजेंसी जिसकी परीक्षा की तैयारी देश के लाखों युवा करते हैं। अगर आप भी SSC की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि अन्य भर्तियों की तुलना में इसमें कम कंपटीशन देखा जाता है और ये भर्ती खास तौर से शॉर्ट हैंड वालों के लिए है। श्रोताओं इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं जो कि 24 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके थे। दोस्तों ये भर्ती ग्रेड सी और ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर भर्ती है जिसमें 731 पद निकले हैं। इसमें परीक्षा का मोड कंप्यूटर बेस्ड है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। शुल्क भुगतान करने की

अंतिम तिथि 16 मई 2026 रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन और सुधार करने की ऑनलाइन पेमेंट करने की तिथि 20 मई से 21 मई 2026 है। दोस्तों, इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा 1 अगस्त 2026 तक पास कर चुका हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट होने चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 40 मिनट और हिंदी में 45 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन मांगी गई है। दोस्तों, ग्रेड सी के लिए 1 अगस्त 2026 को कैंडिडेट की उम्र 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो 28 से 27 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र में एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष और एसटी पीडब्ल्यूडी को 15 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन और युद्ध में हताहत कर्मी आदि को अतिरिक्त छूट देने के नियम भी लागू हैं। दोस्तों, इस भर्ती के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होती है। उनकी पोस्टिंग आवेदकों की प्रेफरेंस और उनकी रैंक पर निर्भर करती है। दोस्तों, इस पोस्ट का काम भी काफी जिम्मेदारी वाला होता है। ये सीधे तौर पर अधिकारियों के भाषण या नोट लेटर्स को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं और उनके कंप्यूटर पर टाइप करते हैं।

बोलियों और धर्मों के लोग रहते हैं, और सभी के रीति रिवाज भी उन्हीं के अनुसार अलग अलग हैं। जिसमें एक त्योहार जैसे रूप में मनाया जाता है तो वो है शादी, लेकिन शादी का एक ही परिणाम होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने का वादा करते हैं, यानी दो लोगों का एक दूसरे के साथ बंध जाना। भारत में शादी की परंपराएं भले ही विविध हो, लेकिन आजकल की शादियां जो होती हैं वो एक त्यौहार, एक उत्सव जैसे रचाई जाती है। खूब धमाल की जाती है, मस्ती की जाती है, खूब खर्चा किया जाता है, सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, वही एक ऐसा वर्ग भी है जो इन तमाम दिखावे और खर्चे से अलग बिल्कुल सरल तरीके से लेकिन वैध तरीके से विवाह करना चाहता है, जिसमें कोर्ट मैरिज सबसे सरल विकल्प बनती जा रही है। चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजन शादी हो, या फिर परिवार की सहमति में देरी, कोर्ट मैरिज इन सभी स्थितियों में एक सुरक्षित और वैध रास्ता देती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कोर्ट मैरिज क्या है, किस कानून के तहत होती है और भारत में इसके लिए क्या प्रावधान है, इन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कोर्ट मैरिज मुख्यतः स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होती है, जो बिना किसी धार्मिक रस्म के दो वयस्कों को विवाह का अधिकार देता है। कोर्ट मैरिज एक सिविल मैरिज है जिसमें किसी भी धार्मिक रीति या अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती है, ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। शादी होने के बाद ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत रजिस्टर्ड होती है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जरिए किसी भी धर्म, जाति या राज्य के व्यक्ति इसमें शादी कर सकते हैं, और कोर्ट में शादी होने के बाद सरकारी प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जो कि पासपोर्ट, वीजा, बैंक और कई तरह के कानूनी कामों में मान्य होता है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। झूठी जानकारी या दबाव में की गई कोर्ट मैरिज आपको ही दोस्तों खतरे में डाल सकती है, जैसे कि लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी ज़रूरी है, दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए, दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, दोनों परस्पर रिश्तेदारी के दायरे में नहीं होने चाहिए। इसके लिए कुछ स्टेप्स की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि कपल को अपने जिले के मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन देना होता है। ये नोटिस सार्वजनिक रूप से 30 दिनों के लिए दिया जाता है। 30 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति कानूनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। अगर कोई कानूनी आपत्ति नहीं आती है तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, 30 दिनों के बाद दोनों पक्षों को 3 गवाहों के साथ उपस्थित होना होता है और रजिस्ट्रार के सामने साइन होते हैं। उसी दिन या कुछ दिनों में विवाह प्रमाण पत्र भी जारी हो जाता है। अब दोस्तों, इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं जो होने चाहिए वो है पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उम्र प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट। इसके अलावा लड़का लड़की दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों की ओर से अविवाहित होने का एफिडेविट या फिर शपथ पत्र, तलाकशुदा या विधवा या फिर विधुर होने की दिशा में इससे संबंधित कोई भी प्रमाण आपको पेश करना होगा। ये हमेशा ध्यान में रखें कि कोर्ट के सामने जो भी दस्तावेज दें सही दें और कोर्ट से कुछ भी छुपाए नहीं।

दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, नई नई जानकारी आपने इसे सीखी होंगी। तो इसी के साथ अब दीजिए मुझे जाने की अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। नमस्कार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी अलवर का। ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है।

0: एआईयूडीएफ राजौर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
1: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
0: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती है और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती है। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। एआईएडीएमके को 4 सीट मिली है, 41 पर आगे है। पीएमके 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजय हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आज शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा नई तकनीकी से बढ़ाएं कपास की उत्पादकता। साथ ही एक भेंट वार्ता हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे, कृषि और वानिकी साथ साथ अपनाएं। साथ ही मौसम और बाजार भाव की जानकारी आपको दी जाएगी और होगा गीत संगीत। 7:30 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 8:15 लोक संगीत आप सुन सकते हैं। 9:15 समाचार संध्या हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:00 अंग्रेजी में समाचार भी आप दिल्ली केंद्र से ही सुन सकेंगे। 9:15 विविध भारती के कार्यक्रम हम मुंबई से रिले करेंगे। 11:00 होंगे हिंदी में समाचार, जिसे आप दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। श्रोताओं, ये थी हमारी आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

5 बजे महिला जगत कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय रहेगा क्यों जरूरी है जल संरक्षण। साथ ही जानकारी दी जाएगी विश्व अस्थमा दिवस की। विविधा में आपको बताया जाएगा हीट वेव से बचाएं खुद को किस प्रकार। 5:30 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज की बात में आप सुनेंगे प्रतिभा हमें शीर्ष तक ले जाती है लेकिन हमारा व्यवहार तय करता है कि हम वहां तक कब तक रहेंगे। रोचक जानकारी में आप जानेंगे जापान में डेटिंग ऐप सब्सिडी और होंगे थीम सॉन्ग्स।

कल शाम 7 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकेंगे। विषय होगा उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाएं। विशेषज्ञ होंगे श्री के एल मीणा, उपनिदेशक उद्यान विभाग अलवर। श्रोताओं, ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर।

आशा भोसले और अमित कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी जवानी। और इसी के साथ हमारा ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं समाचार। मुख्य समाचार। चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की गणना जारी। पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों में भाजपा और सहयोगी दल सरकार बनाने की ओर। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत। कई हिस्सों में तापमान में सामान्य से 2 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार। राज्य सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS पोर्टल और ऐप के माध्यम से 70 देशों से रिकॉर्ड 90 लाख टिकट बुक की गई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुडुचेरी में वह सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी TVK ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में UDF स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। वहीं राजस्थान में भी तीन राज्यों में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन पर प्रदेश के नेताओं ने हर्ष व्यक्त

0: किया है। इस अवसर पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। नेताओं ने सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और नेतृत्व को दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन नतीजों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और वहां भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने असम में भी पार्टी की बढ़त को विकास की जीत बताया।
1: आसाम में हमारी सरकार आसानी से बन रही है, पुडुचेरी में आसानी से बन रही है और बंगाल में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए जनता ने इस बार ये तय कर लिया कि अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी।
0: उधर उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने चुनाव परिणामों को सुशासन और राष्ट्रवाद की जीत बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं के कड़े संघर्ष का परिणाम है। श्री विश्नोई ने विश्वास जताया कि अंतिम परिणामों में भाजपा सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के अंतर्गत डेटा संग्रहण का कार्य जारी है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत नागरिक 15 मई तक निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 16 मई से 14 जून तक प्रगणक और संबंधित अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। पाली सांसद पीपी चौधरी ने आमजन से इस प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सटीक जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर आगामी वर्षों में क्षेत्र के विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी।
2: स्वगणना 15 मई तक आप घर बैठे अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं और उसके बाद 16 मई से 14 जून के बीच सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, पूरी और स्पष्ट जानकारी दें। आपकी दी गई हर जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आइए जिम्मेदार नागरिक बनकर इस अभियान में भाग लें और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
0: प्रदेश में आज मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जहां गर्मी का असर बना हुआ है, वहीं मध्य और दक्षिणी राजस्थान में दोपहर बाद आंधी और ओलावृष्टि के साथ बारिश दर्ज की गई। राजसमंद जिले में आज दोपहर अचानक मौसम बदला और करीब एक घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जिले के देवगढ़, आमेट, गोमती और केलवा क्षेत्रों में अच्छी बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी और तपन से काफी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक 48 मिलीमीटर बारिश सीकर के श्रीमाधोपुर में दर्ज की गई। इस दौरान फलौदी में सर्वाधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि अलवर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है।
3: आज भी सिस्टम का जो असर है वो पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आदिति क्षेत्र है, कोटा संभाग के जो क्षेत्र है, भरतपुर संभाग के क्षेत्र और जयपुर संभाग के क्षेत्रों के अंदर आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो चुकी है और आज भी तापमान जो है पूर्वी राजस्थान में ज्यादा राइज नहीं करेंगे। इस सिस्टम का प्रभाव जो है कल शाम तक प्रदेश के ऊपर से समाप्त होगा, जिसके बाद तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिलेगी।
0: इधर भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने अपने जवानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विशेष पहल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश भर के कांस्टेबलों को 5 लाख ORS के पैकेट्स वितरित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कड़ी धूप में ड्यूटी के दौरान जवानों को डिहाइड्रेशन से बचाना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में पांडुलिपि प्रदर्शनी और 21 दिवसीय लिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। राजस्थान सांस्कृतिक अकादमी तथा वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की पहल की सराहना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियां हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं वैदिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन को ज्ञान संपदा के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम बताया।
4: 16 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमने डिजिटलाइज किया है, पूरे भारत में नंबर 1 राजस्थान आया है, बहुत गर्व की बात।

0: ये हमारी धरोहर है, इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिजिटलाइजेशन से बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है किसी भी पांडुलिपि को, मैन्यूस्क्रिप्ट को। ये धीरे धीरे हो रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल नवाचारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से विकसित ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS देश का पहला ऐसा सरकारी प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां से पर्यटक एक साथ कई स्थलों के टिकट बुक कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आज जारी किए गए एक बयान में बताया कि इस पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अब तक 70 देशों से 90 लाख से अधिक बुकिंग की जा चुकी है, जिससे 3 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को सुविधा मिली है। यह प्रणाली पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस है। इससे राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इस नवाचार के लिए राजस्थान को प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में इस पोर्टल से आमेर किला और सरिस्का टाइगर सफारी सहित 100 से अधिक पर्यटन स्थल जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पर RTDC होटलों की बुकिंग और जवाहर कला केंद्र के कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां और योगाभ्यास शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली जिले में 50 दिवसीय योगाभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित पार्केश्वर उद्यान में यह शिविर 20 जून तक चलेगा। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा आमजन को विभिन्न आसनों और प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग किया जा रहा है। उधर सलूम्बर जिले में आयुष विभाग की ओर से विद्यार्थियों को योग और आयुर्वेद के लाभ बताए जा रहे हैं। राजकीय आयुर्वेद औषधालय सराड़ी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में करीब 300 विद्यार्थियों को ग्रीष्म ऋतु में स्वास्थ्य सुरक्षा और मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करने के व्यवहारिक उपाय समझाए गए। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही एक और नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है। जिले के बंद बारेठा में एक बायोलॉजिकल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। DFO चेतन कुमार ने बताया कि इस प्रस्तावित पार्क में शेर, बाघ और तेंदुए जैसे बिग कैट्स के साथ साथ जिराफ, जेब्रा, हिप्पो और राइनो जैसे बड़े वन्यजीव भी रखे जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना है।
2: 60+ स्पीसीज एनिमल कलेक्शन प्लान में ड्राफ्ट किया है। इसमें लगभग 25% तक एक्सोटिक स्पीसीज रहेंगे, जो CZA गाइडलाइंस के अनुसार मैक्सिमम परसेंटेज परमिसेबल है। इसके अलावा मेजर फोकस तो एंडेमिक स्पीसीज रहेगा। अट्रैक्शंस रहेंगे तो ये बिग कैट्स ही हमेशा, जैसे लायन है, टाइगर है और लेपर्ड भी है। उनके अलावा लार्ज मैमल्स में आपका हिप्पोपोटामस, ज़ेब्रा, जिराफे भी शामिल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अग्नि सुरक्षा सप्ताह का विषय सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज अग्नि रोकथाम के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करना एक साझा और सामूहिक जिम्मेदारी है। इस सप्ताह के दौरान राष्ट्रव्यापी स्तर पर जागरूकता और तैयारी संबंधी गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। श्री गंगानगर के विभिन्न विद्यालयों में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस अभियान में सरदारपुरा, बीका और निर्वाणा सहित 5 विद्यालयों के 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने जीवन में कभी नशा ना करने और समाज को इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की बुराइयों से दूर रखकर स्वस्थ भविष्य के लिए प्रेरित करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा

0: चुनावों की गणना जारी, पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में भाजपा और सहयोगी दल सरकार बनाने की ओर। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत, कई हिस्सों में तापमान में सामान्य से 2-4 डिग्री की गिरावट के आसार। राज्य सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS पोर्टल और ऐप के माध्यम से 70 देशों से रिकॉर्ड 90 लाख टिकट बुक की गई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। सवाईमाधोपुर जिले में HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। 14 वर्ष की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर ये टीके लगाए जा रहे हैं। गार्डासिल 4 की एकल खुराक से इस रोग से बचाव सुनिश्चित होता है। इस साल 28 फरवरी से शुरू किए गए इस देशव्यापी अभियान के तहत जिले में भी विद्यालयों में विशेष जागरूकता सत्र रखे जा रहे हैं। अभिभावक सहमति भरकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से पात्र बालिकाओं को ये टीके लगवा सकते हैं। टीका लगवाने वाली इन बालिकाओं का विवरण यूविन पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बालिकाओं ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुरक्षा कवच को अपनाकर वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत संभावित रोगियों की पहचान की जा रही है। उच्च जोखिम वाले गांवों में ग्राम सभाओं के माध्यम से भी टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही टीबी उन्मूलन अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए निक्षय शपथ कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे ग्राम रथ अभियान को जिले में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। इसके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। LED मोबाइल वैन और स्थानीय लोक कलाकारों के जत्थों के जरिए मनोरंजक अंदाज में ये जानकारी दी जा रही है। इससे लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर कानाराम और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया की निगरानी में इस अभियान के जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार जारी है। अब तक ये प्रचार रथ खंडार, बामनवास, गंगापुर सिटी और सवाईमाधोपुर विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों में पहुंच चुके हैं। इनसे लोगों में 13 विभागों की योजनाओं के बारे में प्रभावी जानकारी बढ़ रही है। जिले में जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें 1 मई से स्वगणना के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। जिला कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी ने स्वगणना प्रक्रिया में अपना विवरण दर्ज करवाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जिलेवासियों से भी राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान से जुड़ने की अपील की। 16 मई से 14 जून तक प्रगणक घर घर जाकर जनगणना का काम करेंगे। सवाईमाधोपुर में कृषि कार्यालय परिसर में एग्री क्लिनिक बनाया गया है। ये किसानों के लिए एक समेकित सेवा केंद्र के रूप में काम करेगा। इस केंद्र पर किसानों को मृदा परीक्षण, फसलों में कीट और रोगों की पहचान और उनकी उपचार संबंधी सलाह और अन्य मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही खेतों में संतुलित उर्वरक का उपयोग करने की भी सलाह दी जाएगी, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। राज्य सरकार की गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत जिले के खंडार ब्लॉक का चयन किया गया है। इसके तहत खंडार के समग्र उत्थान के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत ढांचे के विकास सहित विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने खंडार ब्लॉक के चहुंमुखी विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस ब्लॉक के सर्वांगीण विकास के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने फील्ड कार्मिकों को प्रेरित और प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। जिले में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी का असर रहा, इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं इन दिनों मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है और आंधी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इससे तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। बीते महीने जिले में हैंडपंप मरम्मत का विशेष अभियान चलाया गया। 2 दिन के इस अभियान के तहत सुचारू पेयजल व्यवस्था

0: के लिए खराब हैंडपंपों की मरम्मत की गई। जिला प्रशासन गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की समुचित आपूर्ति के प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही सवाई मधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, चार राज्य और केंद्र राजवाड़ा प्रदेश पुदुचेरी माए विधानसभा चुनाव माए पड़िया वोटा की गिनती चल रही है। पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्य माए भाजपा और हमारा सहयोगी दल सरकार बनावन ओड़ी बद रहा है। प्रदेश का कई हल्का माए बारिश में वणु गर्मी उत्साह मिली, पारो 2-4 डिग्री सेल्सियस ताई और उतरण रहा आसार। राज्य सरकार का नियम विकसित करी चिया OBMS पोर्टल और ऐप जरिए 70 देशाओं रिकॉर्ड 90 लाख टिकट बुक कराई चिया। और स्वास्थ्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह री शुरुआत कीनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। चार राज्यों और केंद्र राजवाड़ा प्रदेश पुदुचेरी रा विधानसभा चुनाव में पड़िया वोटा की गिनती चल रही है। हाल ताई मिलिया रुझाना रे मुजब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत ओड़ी बढ़ रही है, जबकि असम और पुदुचेरी में मददगार पार्टियां सागे पाछी राज में आती दिख रही है। तमिलनाडु में अभिनेताओं नेता बनिया विजय रिपार्टी TVK मोटो बदलाव करती नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस री अगुवाई में UDF साफ बहुमत हासिल करते दिख रहे है। इस बीच पश्चिम बंगाल असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रा प्रदर्शन मत है राज्य रा नेता ये खुशी जताई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में आला नेताओं मंत्रियों और विधायकों री ओरों जीत री बधाई दी रिची। ये मौके मुख्यमंत्री रा रहवास माथे भाजपा रा कार्यकर्ता एक दूजा ने मिठाई खिलार खुशी जताई और कामयाबी रो शे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री नीतियां ने दिनो। पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता बदलाव रो मन बना लीनो है और वछे भाजपा पूरा बहुमतों सरकार बनावेला।
2: आसाम में हमारी सरकार आसानी से बन रही है, पुडुचेरी में आसानी से बन रही है और बंगाल में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए जनता ने इस बार ये तय कर लिया जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन देगी।
1: प्रदेश रा उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई आ रुझाना ने सुशासन और राष्ट्रवाद री जीत बताई। राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रा तेत जानकारियां भेड़ी करण रो काम चल रियो है। देश भर में चलाया जा रहा ये अभियान रा तेत पोर्टल माथे जार 15 मई ताई प्रपत्र खुद भरियो जा सके है। इन पाछे जनगणना रा दूजा दौर में 16 मई 14 जून ताई प्रगणक और संबंधित अहलकार घर घर जार जानकारी करेला। पालीरा सांसद PP चौधरी जनताओं इन प्रक्रिया में शामिल फेवन री अरज कीनी है।
3: स्वगणना 15 मई तक आप घर बैठे अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं और उसके बाद 16 मई से 14 जून के बीच सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर जानकारी लेंगे। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, पूरी और स्पष्ट जानकारी दें। आपकी दी गई हर जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आइए जिम्मेदार नागरिक बनकर इस अभियान में भाग लें और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: अरब मौसम, प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए दोपहर पाछे आंधी चालन और ओला पड़वा सागे में बरसन रा समाचार है। राजसमंद जिला में दोपहर पाछे करीब 1 घंटा ताई जोरदार बायरो बाजन सागे पानी बरसियो। जिला रा देवगढ़ आमेट गोमती और केलवा माए बिरखा सागे ओला पड़बारा समाचार है। श्री गंगानगर जिला रा रावला सूरतगढ़ और अनूपगढ़ समेत कई ठोड़ा बिरखा भी, जबकि अनूपगढ़ कने 12H हिस्याम की और सूरतगढ़ रा गांव करडू माए ओला पड़िया। जैसलमेर कने पोखरण माए करीब आधा घंटा ताई झमाझम बिरखा वेवण सा गए ओला पड़िया। लाडला 24 घंटा माए सब 32-48 मिलीमीटर बारिश सीकर जिला रा श्री माधोपुर माए दर्ज करी ची। पाली जिले

0: तारा गोरम घाट और हरिया माली माए बिरखा सागे ओला पर बारा समाचार है। इन बीच फलौदी माए सबू बत्तो 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आज शेखावाटी हल्का और जयपुर और भरतपुर संभाग माए ओला पड़बा सागे जोरदार बायरो बाजन रा आसार है। महकमा रा वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा आकाशवाणी ने बतायो कि पश्चिमी विक्षोभ रा असर हूँ आवता दिना प्रदेश माए पारो 2-4 डिग्री सेल्सियस ताई उतरबा रा आसार है।
1: आज भी सिस्टम का जो असर है वो पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा संभाग के जो क्षेत्र है, भरतपुर संभाग के क्षेत्र और जयपुर संभाग के क्षेत्रों के अंदर आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट हो चुकी है और आज भी तापमान जो है पूर्वी राजस्थान में ज्यादा राइज नहीं करेंगे। इस सिस्टम का प्रभाव जो है कल शाम तक प्रदेश के ऊपर से समाप्त हुए, उसके बाद तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिलेगी।
0: इन बीच प्रदेश माए पड़ रहा तावड़ा और लू न ध्यान रखता थका राजस्थान पुलिस तावड़ा माए ड्यूटी रे दौरान जवाना ने पानी रे कमी बचावन सारू ORS रा 5,00,000 पुड़का मुहैया करावेला। ORS रा 90,000 पुड़का आज जयपुर री राजस्थान पुलिस अकादमी माए पुगा दिया चिया। जवाना ने सिखावन देवन रो काम देख रहा DIG शरद चौधरी बतायो के आ सामग्री रेंज IG और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ना जरिए जवाना ताई पुगाई जावेला। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो है कि जूनी और घनी कम मिलन वाली पांडुलिपियां मानी समृद्ध सांस्कृतिक और वैदिक विरासत री अनमोल धरोहर है। वे आज जयपुर माए पांडुलिपि प्रदर्शनी और 21 दिन री लिपि प्रशिक्षण कार्यशाला रा उद्घाटन जलसा माए बोल रही है। उपमुख्यमंत्री राजस्थान संस्कृत अकादमी और वैदिक हेरिटेज और पांडुलिपि शोध संस्थान का नींव राखी जी कार्यक्रम माए ज्ञान भारतम मिशन रा तहत पांडुलिपियां ने डिजिटल बनावन रे पहल रे सराहना की नी। दिया कुमारी पांडुलिपियां ने डिजिटल बनावन रा काम ने ज्ञान संपदा ने बचावन रो मजबूत जरियो बतायो।
2: 16,00,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमने डिजिटलाइज किया है, पूरे भारत में नंबर वन राजस्थान आया है, बहुत गर्व की बात है। ये हमारी धरोहर है, इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। डिजिटलाइजेशन से बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है किसी भी पांडुलिपि को, मैन्युस्क्रिप्ट को। ये धीरे धीरे हो रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। प्रदेश माए सैर सपाटा ने बधाओ देवन सारू सूचना प्रौद्योगिकी विभाग री ओर ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS विकसित करी चियो है। ओ देश रो पहलो सरकारी प्लेटफॉर्म है जठे एक ऐसा गए कई थोड़ा ना टिकट बुक कराया जा सके है। ई पोर्टल और मोबाइल ऐप रे जरिए हाल ताई 3 करोड़ बत्ता सैलानी 90,00,000 बत्ती बुकिंग कराई है। बिना नकदी और बिना कागज पेन वाला ई सिस्टम रे जरिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपये बत्ती आमदनी भी है। ई नुआ काम सारू राजस्थान ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड नवाजी जियो है। OBMS रे जरिए फिलहाल आमेर किला और सरिस्का टाइगर सफारी समेत 132 ठोड़ा ने बुकिंग कराई जा सके है। आवता भगत माए ई प्लेटफॉर्म रे जरिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC री होटल माए बुकिंग और जयपुर रा जवाहर कला केंद्र रा कार्यक्रम री जानकारी करी जा सकेला। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए राज्य माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। पाली जिला माए चलाई जियो योगाभ्यास कार्यक्रम 20 जून तक चलेला। वठा योग रा जानकार जनता ने न्यारा न्यारा आसना और प्राणायाम रे जरिए शरीर और दिमाग ने तंदुरुस्त राखन रे बारा माए सिखावन दे रहा है। सलूम्बर जिला माए आयुष विभाग री ओरों विद्यार्थियों ने योग और आयुर्वेद रा फायदा री जानकारी दी जा रही है। राजकीय आयुर्वेद औषधालय सराड़ी का नींव राखी जा कार्यक्रम माए करीब 300 विद्यार्थियों ने उनाला माए स्वास्थ्य ठीक राखण और स्क्रीन टाइम कम करण रे बारा माए जानकारी दी जी। हनुमानगढ़ माए जिला स्तर री 7वीं योगासन होड़ राखी जी किण माए 60 प्रतिभागी न्यारा न्यारा आयु वर्ग माए संतुलन और ध्यान रो बेहतरीन दर्शाव कीनो। भरतपुर जिला रा बंध बारेठा माए बायोलॉजिकल पार्क विकसित

0: करण रो प्रस्ताव है। डीएफओ चेतन कुमार बतायो कि इन पार्क माए नार बाघ और तेंदुआ जिराफ जेब्रा दरियाई घोड़ा और गेंडा सरीखा मोटा जनावर लाया जावेला।
1: 60 प्लस स्पीसीज एनिमल कलेक्शन प्लान में ड्राफ्ट किया है, इसमें लगभग 25% तक एक्जॉटिक स्पीसीज रहेंगे जो सीजेडए गाइडलाइंस के अनुसार मैक्सिमम परसेंटेज परमिसेबल है। इसके अलावा मेजर फोकस तो एंडेमिक स्पीसीज रहेगा। अट्रैक्शंस रहेंगे तो ये बिग कैट्स ही हमेशा, जैसे लायन है, टाइगर है और लेपर्ड भी है। उनके अलावा लार्ज मैमल्स में आपका हिप्पोपोटामस, ज़ेब्रा, जिराफे भी शामिल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

0: परसेंटेज परमिसेबल है। इसके अलावा मेजर फोकस तो एंडेमिक स्पीसीज रहेगा, अट्रैक्शंस रहेंगे तो ये बिग कैट्स ही हमेशा, जैसे लायन है, टाइगर है और लेपर्ड भी है। उनके अलावा लार्ज मैमल्स में आपका हिप्पोपोटामस, ज़ेब्रा, जिराफे भी शामिल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय री ओर सगला राज्य केंद्र राज वाला प्रदेश और न्यारी न्यारी एजेंसियां री मदद आखा देश में आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह शुरू करी चियो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव आज नई दिल्ली में इनरो उद्घाटन किन्नो। इ मौके वे कहो कि इन साल अग्नि सुरक्षा सप्ताह रो मुद्दो सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, अग्नि रोकथाम के लिए एकजुट राखी चियो है। इनरो मकसद लाए लागण रे कारण उपजन वाला खतरा और वाना दूर करण रा महत्व रे बारा माय जाग जगावनो है। ई मौके पाली माय CMHO डॉक्टर विकास मारवाल एहलकारा और कर्मचारियों ने अग्नि सुरक्षा री सौगंध दिलाई। सवाई माधोपुर जिला में चौथ का बरवाड़ा शिवाड़ गेला मत है डिडायच गांव में पुल बनायो जावेला। खंडार रा विधायक जितेंद्र गोठवाल आज पुल बनावन रा काम री नींव रखी। ई मौके वे कहो कि हल्का रा विकास माय धन री कोई कमी नी आवन दी जावेला। फिलहाल छोटी रपट रे कारण चौमासा माय 25 किलोमीटर दूर शिवाड़ जावन सारू टोंक वेर करीब 70 किलोमीटर रो सफर करनु पड़े है। ओ पुल बन जावनु आ परेशानी आगे वे जावेला। नशा मुक्ति अभियान रा तेज से गंगानगर जिला री स्कूलां माय आज जागरूकता कार्यशाला व राख हर नशा रा गलत असर रे बारा माय जानकारी दीरी ची। आ माय सरदारपुरा बीका और निर्वाणा समेत न्यारी न्यारी स्कूलां रा 2022 विद्यार्थी शामिल फिया। ये मौके विद्यार्थी नशो नी करण री सोगन लीनी। आखिर माय खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। चार राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव में पड़िया वोटों की गिनती चल रही है। पश्चिम बंगाल समेत तीन राज्य में भाजपा और हमारा सहयोगी दल सरकार बनावन ओडी बढ़ रहा है। प्रदेश के हल्का में बारिश वे वणु गर्मी उसाता मिली। पारो 2-4 डिग्री सेल्सियस ताई और उतरन रा आसार। राज्य सरकार कानून विकसित करी जया OBMS पोर्टल और ऐप जरिए 70 देशों रिकॉर्ड 90 लाख टिकट बुक कराई चिया। और स्वास्थ्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कीनी। इस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम में की चौपाल में बैठा सभी किसान भाई और बहनों को महेश भाई की ओर से घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज की अपनी चौपाल में अपन चर्चा करेंगे नई तकनीकी से बढ़ाएं कपास की उत्पादकता, और जानकारी की बातों का विषय है कृषि और वानिकी साथ साथ अपनाएं। साथ ही सुनेंगे एक वार्ता, ई नाम से किसानों को लाभ। किसान भाइयों, साथ ही सुनेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव, और सुनेंगे एक चौकासा लोकगीत। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा, जिसका विषय है नई तकनीकी से बढ़ाएं कपास की उत्पादकता। किसान भाइयों, कपास एक रेशेदार आर्थिक महत्व की नकदी फसल है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास के रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं, बिनौले पशु आहार के रूप में काम में आते हैं, बिनौले से तेल निकालकर खाद के रूप में भी काम में लिया जाता है। कपास वैसे तो संपूर्ण भारत में की जाती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। राजस्थान में भी ये तेजी से बढ़ रहा है, अपने अलवर क्षेत्र में भी, खैरतल क्षेत्र में

0: में भी तेजी से इसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इन राज्यों में लगभग 90% कपास का उत्पादन होता है। पिछले कुछ वर्षों से बीटी कपास एक नई वैरायटी आई है, जिसकी खेती करने से कपास का उत्पादन लगातार बढ़ा है और शीर्ष तक पहुंचा है। क्योंकि कपास की खेती में कीट व्याधि प्रकोप काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। फसल की अवस्था और मौसम के आधारित बहुत सारी बीमारियां इनमें लग जाती है। तो सही किस्म का चुनाव, समय पे बुआई और सही तरीके से बुआई, रसायनों का सही सही उपयोग करना, ये हमारे लिए आवश्यक होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। कपास की बुआई के लिए दोमट चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है, जिसमें पानी निकास वाली पूर्ण व्यवस्था हो। खेत की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें और उसके बाद दो तीन जुताई देसी हल से करें और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। भूमि का उपचार भी आवश्यक है। जिस खेत में दीमक का प्रकोप हो, उसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथयान 2:1 चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला दें। बीजों की अगर अपन बात करें, बीजों की किस्मों के बारे में भी बात करेंगे, तो पहले बीज, कोई भी जब हम फसल बोएं तो उसमें बीज उपचार अवश्य होना चाहिए। ऐसे ही कपास में भी बीज तथा मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पूर्व 2 ग्राम कार्बोडिजम या 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। फसली शुरुआत अवस्था में रस चूसने वाले कीट की रोकथाम के लिए इमीडाक्लोप्रिड 70 WS तथा थायोमिथेक मिथेक्स 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करके अपने जो बीज है उसको बोएं। इसके अलावा मृदा में उर्वरकता बढ़ाने के लिए 1.5 लीटर पानी में 300 ग्राम गुड़ को गर्म करके घोल बनाएं और 600 ग्राम एजेटोबैक्टर व 600 ग्राम PNB जीवाणु खाद में 1 हेक्टेयर की बीज की बुआई की मात्रा में मिलाकर छाया में सुखाकर फिर इसे बोएं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं अपन बीज की। तो इसमें अगर अमेरिकन कपास बोनी है तो तुराब PA 255, वागड़ कल्याण ये संकर नस्ल है, और संकर बीटी कपास की जो देर से पकने वाली किस्म है उसमें संकर 8H8 भी कहते हैं, DC S32, NCS 145 जो बीजी सेकंड है, पारस ब्रह्मा बीजी सेकंड, SWCS 4746 बीजी सेकंड, बीटी संकर 8 BG सेकंड। ये जो भी अपने सब एरिया में मिलती हों और जो अपनी खेती के लिए बढ़िया हो, उनको अपन इसमें से चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो रही आज की चर्चा की बात, और अब सुनते हैं एक भेंट वार्ता। ई नाम से किसानों को लाभ, ये वार्ता है और वार्ताकार है डॉक्टर सुमन शर्मा, कृषि वैज्ञानिक प्रसार शिक्षा। तो सुनिए किसान भाइयों ये वार्ता।
1: भाइयों एवं बहनों, मैं सुमन शर्मा, कृषि वैज्ञानिक प्रसार शिक्षा, आज आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का कृषक खेती से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। होता क्या है, किसान बड़ी हसरत से अपने खेत में सबसे पहले तो बुवाई करता है, फिर फसल को तैयार करता है। महीनों बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे बाजार का संकट होने लगता है। वो फसल काट कर मंडी में भी ले जाता है और वहाँ जब वह उसी फसल का दाम उसे जब ओना पोना मिलता है तो वह परेशान हो उठता है। यही बाजार और अपने कृषि उत्पाद का अच्छा दाम न मिलना उसी कृषक की आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। कृषक की इस समस्या को देखते हुए और आपके इस दर्द को समझते हुए भारत सरकार ने फसलों की ऑनलाइन बिकवाली के लिए देश में कृषि बाजार खोला है। ई नाम इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा कृषि उत्पाद विपणन समिति का एक मंडी का एक प्रसार है। ई नाम पोर्टल सभी कृषि उत्पाद विपणन समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है।

इनमें उपज के आगमन और कीमतों, व्यापार प्रस्तावों को खरीदने बेचने एवं प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान शामिल है। ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म है जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। यह भारत के किसी भी राज्य में मौजूद कृषि बाजार को प्लगइन प्रदान करता है। इसमें कोई भी मंडी बिना किसी चार्ज के शामिल हो सकती है। इसके द्वारा हर राज्य की मंडियों के नियमों और फैसलों के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाता है। इसका लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। इस पोर्टल की खासियत यह है कि किसान खुद को सीधे तौर से इस पर पंजीकृत कर सकते हैं। इस पोर्टल के तहत पंजीकृत किसान अपनी फसल को अंतरराज्यीय व्यापार के तहत किसी भी राज्य में बहुत आसानी से बेच सकता है। किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी में लाएंगे तो उन्हें स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपने माल बेचने का विकल्प मिलेगा। ऐसे में किसानों को जहां अपनी उपज का बेहतर भाव मिलेगा, किसान वहां बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत किसान ऑनलाइन स्तर पर फल, सब्जियां, अनाज आदि बेच सकते हैं। ई नाम के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना की विषमताओं को दूर करता है एवं वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर उचित वास्तविक मूल्य की खोज को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि बाजारों में वस्तुओं की खरीदी और बिक्री में पारदर्शिता लाना और राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की एक कीमत तय करना है। राज्य में उपस्थित बाजारों में बिना उपस्थिति या बिना किसी दुकान या कब्जे के व्यापारियों, किसानों और एजेंटों को लाइसेंस उपलब्ध करवाना। इसके अलावा एक लाइसेंस के जरिए व्यापारी पूरे राज्य की मंडियों में व्यापार करने में सक्षम होगा। इसके द्वारा अच्छी गुणवत्ता और तय मानकों के उत्पादों के लिए सभी ग्राहक एक ही जगह पर बोली लगा सकते हैं। किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा पास उपस्थित चयनित प्रयोगशाला में और मौजूदा मंडियों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। ई नाम के फायदे, सबसे पहले इसका जो फायदा होता है वो किसानों को होता है। किसान जो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। ई नाम के द्वारा किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए बहुत सारे विकल्प प्रदान किए जाते हैं, जिससे वह अपनी फसल की सही कीमत प्राप्त करने में सक्षम बनता है। दूसरा फायदा यह होता है कि उसे बेहतर मूल्य खोज के माध्यम से व्यापार में पारदर्शिता मिलती है, अधिक बाजारों एवं खरीदारों तक उसकी पहुँच होती है, मंडियों द्वारा कीमतों और आवक पर वास्तविक समय की जानकारी मिलती है, उसको त्वरित भुगतान मिलता है जिससे एक स्वस्थ वित्तीय प्रोफाइल बनाने में वह सक्षम होता है। ई नाम से मंडियों को भी बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि ई नाम अपने सभी उपयोगकर्ता के लिए लाभकारी है। इसमें शामिल सभी उपयोगकर्ता सामान्य से अधिक लाभ अर्जित करते हैं। स्थानीय मंडियों में उपस्थित व्यापारियों को ई नाम के द्वारा पुनः व्यापार करने के लिए नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अधिक लाभ कमा सकते हैं। ई नाम के द्वारा सभी मंडियों में लाइसेंस जारी करने, शुल्क जमा करने और अन्य प्रोसेस के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इसके द्वारा भविष्य में फसल उत्पाद की सही कीमत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा किसानों को, खरीदवारों को लेन देन के लिए सीमित खर्च और ग्राहकों के लिए तय कीमत पर उत्पादों की उपलब्धि को सुनिश्चित करता है। ई नाम के द्वारा पूरे देश के कृषि उत्पादों के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक चेन बनाई गई है, जिससे कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक भंडारण और उसका मूवमेंट आसान हो पाता है। इसके द्वारा मंडियों में लेखा जोखा और अन्य रिकॉर्ड नहीं रखने पड़ते, क्योंकि ई नाम के जरिए ये स्वतः ही हो जाता है। इसके द्वारा व्यापारियों और कमीशन एजेंट पर निगरानी भी रखी जा सकती है और इसके द्वारा उन्हें एकीकृत रूप से निर्देश भी दिए जा सकते हैं। इसके द्वारा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है, जो नीलामी में होने वाली हेराफेरी को भी रोकने में मदद करता है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलता है। क्योंकि इसके द्वारा मंडियों में होने वाले ट्रांजेक्शन का लेखा जोखा बना रहता है, तो मंडियों में की जाने वाली वसूली भी आसान हो गई है। इसमें व्यापार और अकाउंटिंग की सारी प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा स्वतः की जाती है। इसमें मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कमी आई है। इसके द्वारा आने वाले उत्पादों की कीमतों का पूर्वानुमान संभव हुआ है। इसके अलावा इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, कृषि उत्पाद विपणन समिति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले की जानकारी तुरंत उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त हो सकती है। ई नाम के द्वारा व्यापारियों को भी फायदा होता है, किसानों के बाद व्यापारी

0: हैं जो फसलों को बाजार तक पहुंचाते हैं। ई नाम के द्वारा व्यापारियों को अपनी फसलों को बेचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उन्हें भी फायदा मिलता है। खरीदार, ई नाम के द्वारा मंडियों में प्रत्यक्ष खरीदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मध्यवर्ती लागत को कम किया जाना संभव है, जिसका लाभ अंतिम ग्राहक को भी मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में आप पंजीकरण कैसे कर सकते हैं या ई नाम पर आप किस तरह से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों आपको जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे, जिसमें आपके बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका पहचान पत्र, पासबुक की फोटोकॉपी, आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ई नाम पोर्टल एवं ई नाम मोबाइल ऐप पर आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए किसान अपना पंजीकरण करने के लिए enam.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप दिखाई पड़ रहे किसान वाले रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको एक फॉर्म दिखाई पड़ेगा, इस फॉर्म को आपको पूरा भरना है। इसमें आपसे कुछ सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, जैसे राज्य, शहर, जिला, मंडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी फोटो आईडी इत्यादि। इस जानकारी के अलावा आपको अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी भी भरनी होगी, जैसे कि खाता संख्या, आपके बैंक का नाम, आपके बैंक का आईएफएससी कोड इत्यादि। सबसे अंत में आपको अपनी बैंक के पासबुक की प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी तथा अपना आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इतना करते ही आप इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आगे की जानकारी एवं कार्यवाही को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाएंगे। यही वह पोर्टल है जिसे ई नाम नाम दिया गया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था यहाँ से अपने लिए आवश्यक जानकारी अर्जित कर सकता है। यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर कोई किसान या व्यापारी इसमें रजिस्टर होना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है, वह वेबसाइट की विजिट पर विजिट करें, रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस पोर्टल पर किसान व्यापारियों सभी के लिए स्वतंत्र सेक्शन है, जहाँ वे अपने उपयोगी सामग्री अर्जित कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस पोर्टल पर नेशनल एग्रीकल्चर इवेंट और फसलों की वर्तमान कीमत आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ जो ई नाम ऐप है, जो हम मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके क्या फायदे हैं। ई नाम मोबाइल ऐप को कुछ नई और बेहतर सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है। यह किसान एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए और भी अधिक आसान और समझने में सरल है। इस ऐप में बहुत सी भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तेलुगु और उड़िया। इस ऐप के जरिए किसान अब नीलामी के साथ अपनी फसलों की मंडी में पहुंच की जानकारी अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसान भी बैंक द्वारा प्राप्त मैसेज से प्राप्त पेमेंट की जानकारी हासिल करने में सक्षम होंगे। यह ऐप बाजार की स्थिति की सभी जानकारी तुरंत ही प्रदान करेगा। इसके अलावा किसान किसी कार्यक्रम या व्यापारिक सेशन की जानकारी भी तुरंत ही हासिल कर पाएगा। इसके जरिए किसान एवं व्यापारी विभिन्न जानकारी एकत्रित करके लाभ कमाने में सक्षम होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद कृषि उत्पादन बाजार कमेटी को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। इसका मकसद कृषि उत्पाद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है। इसके फायदे को देखते हुए किसान तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं एवं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए कृषि उत्पादों का अधिक दाम मिलेगा, तो निश्चित ही 2022 तक किसानों की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ई नाम, ये इलेक्ट्रिक पोर्टल है जो किसान भाइयों को जो नेशनल मंडी से जोड़ने का काम करता है, भाव अच्छी तरह से उनका पता कर सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो रही वार्ताकार थे डॉक्टर सुमन शर्मा, कृषि वैज्ञानिक, प्रसार शिक्षा। अब सुनते हैं एक संदेश।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: किसान भाइयों, अब समय है मनोरंजन का, तो सुनते हैं एक चौका सा लोकगीत।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: किसान भाइयों, अब है समय जानकारी की बात, कृषि और वान की साथ साथ अपनाएं। कृषि फसलों के साथ साथ वानिकी यानी वृक्षों की खेती करना कृषि वानिकी कहलाता है। यह भूमि का बहुउपयोगी प्रणाली है। इसके अंतर्गत भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र से एक ही समय में कृषि फसलें और वृक्षों के साथ साथ उत्पादन लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में के निवासियों के लिए दैनिक जीवन में अनाज, फल, सब्जियां, साथ साथ चारा, ईंधन और लकड़ियां ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कृषि वानिकी से न केवल उत्पादकता बढ़ती है बल्कि भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र से होने वाली आय में भी वृद्धि होती है। साथ ही भूमि में जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। कृषि वानिकी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि कृषि वानिकी से वृक्षों से प्राप्त होने वाले उत्पाद और अनेक कुटीर उद्योग आरंभ किए जा सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों में कृषि वानिकी के लिए उपयोगी फसलें। कृषि वानिकी दो इकाइयां होती है, एक तो खेती होती है और दूसरी वृक्ष होते हैं। एक इकाई दूसरी इकाई के प्रतिद्वंदी नहीं बने, उनके एक दूसरे के सहयोगी बने, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जैसे अगर 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर से कम वर्षा हो तो वहाँ कृषि फसलें ग्वार, मोठ, बाजरा, तेल, मूंगफली, चना ये लेनी चाहिए। वानिकी फसलों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कुमुद और मोपेन, और उद्यानिकी फसलों में कैर, बेर, लिसोड़ा, बेल, आंवला, नींबू इत्यादि को लिया जा सकता है। घास अगर अपन बोते हैं तो इसमें सेवन और घामण जो घास है उनको उगाया जा सकता है। अगर 250 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर वर्षा होती है तो इसमें गेहूं, सरसों, तोरियां, मूंग, तुरई, लौकी, करेला, सेम इत्यादि लिया जा सकता है। वानिकी फसलों में अंजन, बबूल, आड़ू, सिरस, नीम, रोहिड़ा, शीशम की फसलें ली जा सकती है। उद्यानिकी में अनार, बेर, लसोड़ा, बेल, आंवला, नींबू, सहजना, शरीफा और करौंदा लिया जा सकता है। घमण, मोड़ा, घामण और विलो पैनिक ये घास का भी उगाया जा सकता है। अगर 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो गेहूं, सरसों, तोरियां, मूंग, तुरई, लौकी, करेला, सेम इत्यादि लिया जा सकता है। और इसके साथ सिरस, बकन, शीशम, सफेदा, पापलर, बबूल, सुबूल, उर्ड, शहतूत ये लिए जा सकते हैं। इसके अलावा उद्यानिकी फसलों में बेर, लसोड़ा, बेल, आंवला, नींबू, अमरूद इन फसलों को लिया जा सकता है। घास में भी नेपियर घास है और गिनी घास है, इनको लिया जा सकता है। कृषि वानिकी की विभिन्न प्रणालियां। कृषि वानिकी हमारे लिए काफी पुराने समय से अपनाया जाता रहा है। खेजड़ी और बेर के वृक्षों के साथ साथ दाल के और खाद्य तेलों के लिए दाल का जो दलहन तिलहन फसलों को बोया जाना ये सामान्य बात रही है। कृषि वानिकी के मुख्य वैज्ञानिक प्रणालियां। कृषि वृक्ष प्रणाली, इसमें वानिकी पौधे की उनकी निर्धारित दूरी पर लगा दिया जाता है, बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है और खाली जगह में हम अपनी कृषि फसलों को ले लेते हैं। पॉपुलर के वृक्ष के साथ

गेहूं, आलू, पुदीना, हल्दी, अदरक, अरबी, जो भी सुटेबल हो वो ली जा सकती है। और सुबुल के साथ चना, ज्वार, अरहर, तिल भी लिया जा सकता है। इसके साथ वृक्ष उद्यान प्रणाली, इसके अंतर्गत वृक्षों के साथ फलों की खेती भी की जाती है और वानिकी पौधे लगाए जाते हैं। इनमें जैसे नींबू है, केला है, पपीता, बेर, करौंदा, आड़ू, इनके पेड़ लगा दिए जाते हैं और इनके बीच में जो जगह बसती है उसमें हम जो हमारी कृषि फसलें हैं उनको ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो रही जानकारी की बात, अब समय है बाजार भाव की। तो आज की अलवर की मंडी में जो बाजार भाव है वो इस प्रकार से है, गेहूं का 2450 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल, जो का भाव 1900 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5100 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 6500 से लेके 7100 रुपए प्रति क्विंटल, और बाजरे का भाव है 1950 से लेके 2050 रुपए प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज के मौसम की। तो आज का जो मौसम है उसमें अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। आज वर्षा की संभावना है और मौसम विभाग द्वारा कल शाम तक मौसम साफ होने की संभावना और तापमान बढ़ने की चेतावनी दी जा रही है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है श्री नीरज भगत। सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, घनी घनी राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती आकाशवाणी अलवर का। ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत।

कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ और इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत हमने आपके लिए लिया जांबाज फिल्म से। गायक कलाकार थी सपना।

आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत हमने आपके लिए लिया फिल्म जवानी दीवानी से। इस गीत को गाया किशोर कुमार और आशा भोंसले ने।

किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म जानी दुश्मन। गीत वर्मा मलिक का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी जानम समझा करो। इस गीत को लिखा मजरू ने और संगीत से सजाया अनु मलिक ने। और इसी के साथ हमारा ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए लोक संगीत में आपको सुनवाते हैं सीमा मिश्रा और साथियों के गाए लोकगीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और आइए सुनते हैं सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में ये अगला लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों के गाए लोक गीत, और इसी के साथ हमारा ये लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीत कर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं।

0: बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने

0: ये बात कही।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
1: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
1: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एमए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। यूपीआई से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेन देन किए गए।

ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय

मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी के बारे में। यही है हमारी आज की

जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, बसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
1: अटकन मटकन दहेजे टोकन भंगड़ गुस्सा ठूंसते गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा।

0: गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के।
1: इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड।

से आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहाँ उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था। और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी

गीत गाता चलका ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म थी तपस्या।

चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं, आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

हाँ तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया।

0: आशु गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे

0: तो बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
0: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पहाड़ों में इन नजारों में खो गए हैं साथ तुम्हारे, दिल में जो समा बांधा है दिल ने, देखते रह गए हैं नैन हमारे।

नींदे उड़ चली है आंखों से, जाने कैसे बदला है समा। दे कर के दर्द दिल हमी से पूछते हो, दिल है कहां और दर्द है कहां।

0: मेरे दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा।
1: बस तुम्हीं से रोशन है मेरे अफसाने का नाम, क्या नहीं मालूम तो जान लो। सुन के पुकार आ गए हैं जान हथेली पर लेके, अब तो दीवाने का कहा मान लो।

हरसू दिखाई देते हो अब आसमानों में, चांद तारों में, प्यार भी तू, बहार भी तू, नजर में है और तू ही नजारों में।

क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप

0: में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और दवड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाउचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।